0: या कॉर्पोरेट इवेंट, चंडीगढ़ वाले ब्रिंग्स लाइव पंजाबी केटरिंग स्ट्रेट टू योर सेलिब्रेशन. प्राउडली अवार्डेड बेस्ट ऑफ डैलस फॉर इंडियन फूड बाय डी मैगजीन. स्किप द फ्लाइट एंड टेक द शॉर्टकट टू पंजाब. चंडीगढ़ वाले, अर्विंग, वेयर डैलस मीट्स पंजाब.
1: अटेंशन स्टॉल ओनर्स, रवि's समर किक ऑफ इज बैक जून 3rd एंड जून 4th, 9 AM टू 5 PM. एंड दिस ईयर इट्स डिफरेंट. वी आर टर्निंग द वेयरहाउस इनटू अ फुल ट्रॉपिकल एक्सपीरियंस विद क्रेजी डील्स यू वोंट फाइंड एनीवेयर. न्यू प्रोडक्ट launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.

पहली लाइन 100% करेक्ट, क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग एंड सिंगिंग सच ब्यूटिफुल लिरिक्स फॉर मी। लेकिन दूसरी लाइन से मुझे बहुत बहुत तकलीफ होती है, दिल के टुकड़े हो गए हजारों। भाई पारो यहाँ, फनीशिया यहाँ दिल जोड़ने का काम करती है, ये लिरिक्स प्लीज आप चेंज करिए, थोड़ा टाइम ट्रैवल करिए, 90s में जाइए और बदल दीजिए। फनीशिया और पारो के साथ जो भी चीजें जुड़ी हैं, हमारे आरजेस के साथ जो भी लाइंस जुड़ी हैं, सब जुड़ी रहनी चाहिए, बिकॉज फनीशिया ब्रिंग्स द कम्युनिटी टुगेदर। और सुन रहे हैं आप मुझे पारो को, यानी कि 6:40 से, एंड यू विल कंटिन्यू टू बी विद मी टिल 9 PM। थोड़ी देर में करेंगे बात कि आज का दिन है क्या खास। आज का दिन May 18th मंडे है, बहुत खास है, मंडे तो बहुत स्पेशल दिन होता है। एक हफ्ते की हुई है शुरुआत, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स वी गोना हैव इन दिस वीक। मुझे तो ऐसा ही लगता है मंडे को कि भाई पूरा हफ्ता है, हम क्या क्या कर जाएंगे, चांद पे चले जाएंगे और टाइम मिला तो मार्स वगैरह भी हो आएंगे। कहने का मतलब है कि बहुत उमंग होती है मंडे को, बिकॉज इट फील्स लाइक वी कैन डू सो मेनी थिंग्स। तो आज के दिन और क्या होता है खास मंडे के अलावा, लेट्स टॉक अबाउट दैट इन अ लिटिल बिट। फिलहाल आप लोगों के गाने चला रही हूं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है कॉल और सोच रहे हैं कोई गाना है जो बहुत टाइम से मन में गुनगुना रहे हैं लेकिन सुनना चाहते हैं, तो आप तो जानते ही हैं नंबर स्टूडियो का 9723555555। कॉल राइट अवे एंड फारो विल प्ले इट राइट अवे। राइट अवे नहीं, मतलब इन द ऑर्डर दे कम, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ लाइंड अप गाने हैं। कोमल जी ने बड़ा प्यार से, उनका जैसा नाम है कोमल, उससे उन्होंने गाना कहा, उन्होंने कहा धुरंधर का कोई गाना चला दें। तो धुरंधर के तो सारे गाने बड़े धुरंधर हैं, लेकिन चूंकि उनका नाम कोमल है और मुझे उनकी आवाज भी बड़ी प्यारी लगी, तो मैं चला रही हूं उनके लिए ये प्यारा सा कोमल वाला गाना।

आई एब्सोल्युटली लव वॉचिंग स्पेशली ये पर्टिकुलर गाना, क्योंकि इसमें थोड़ी एक्टिंग है. बाकी बहुत सारे गाने हैं धुरंधर के जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और उसमें ज़्यादा कुछ सीन अलग चलता है और गाने से थोड़ा डिस्कनेक्ट होता है. ये वाला गाना लेकिन पर्टिकुलरली ऐसा है कि गाना और सीन साथ साथ चल रहा है, रोमांस साथ साथ चल रहा है, गाना साथ साथ चल रहा है. डांस नहीं कर रहे हैं लेकिन काफ़ी जो है इन सिंक कह सकते हैं आप चल रहा है, क्योंकि बाकी तो थोड़े से आउट ऑफ सिंक है. ऐसा लगता है एक गाना अलग मस्ती वाला चल रहा है और यहाँ पे कुछ बहुत ज़बरदस्त वायलेंस हो रहा है. तो थोड़ा सा फिल्म में कुछ इस तरह से उन्होंने किया है दैट विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. और आई थिंक ये एक ट्रेंड चलने वाला है. मुझे लगता है कि आगे और भी फिल्में ऐसे करेंगी कि एक आउट ऑफ सिंक गाना अलग एक रजिस्टर पे है और सीन एक अलग रजिस्टर पे है, एंड दैट डिस्कनेक्ट इज क्रिएटिंग सच इंटरेस्टिंग एनर्जी. लेकिन ये एक थोड़ा सा टिपिकल ट्रेडिशनल गाना कह सकते हैं आप और सीन कह सकते हैं. बहुत अच्छा लगा मुझे ये फिर से देख कर, क्योंकि आप भी देख सकते हैं अगर आप हमारी finisher.net जाएं या फिर हमारी ऐप डाउनलोड करें. यू कैन ऑल्सो वॉच हमारे यहाँ पे, स्पेशली इफ यू आर नॉट ड्राइविंग, तो कुछ हमारे लिसनर्स जो हैं वो देखते भी हैं. एंड द पिक्चराइजेशन ऑफ दिस आज मुझे बहुत अच्छा लगा देख के. फिर से मैंने देखी ये फिल्म ऑब्वियसली, और ये गाना भी इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज आई वॉज पेइंग अटेंशन टू द एक्टिंग. ये जो इसमें जो एक्टिंग कर रहे हैं रणवीर सिंह एंड सारा अर्जुन, एंड व्हाट आई नोटिस्ड इज कि बहुत हल्की हल्की हाव भाव में फर्क है दोनों के, मतलब जो बहुत न्यूआंसेस हैं, एंड दिस इज सो इंटरेस्टिंग द वे दे आर डूइंग इट. तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि ये गाना है गहरा हुआ. ये गहरा हुआ तो रोमांस के लिए है, प्यार गहरा हुआ, लेकिन इससे एक्टिंग गहरी हुई. इट इज रियली क्रिएटिंग डेप्थ इन द सीन, एंड ऑब्वियसली इट्स अ डेप्थ इन द एक्टिंग एंड इन द स्टोरी टेलिंग. अगर दो कलाकार बहुत स्ट्रांग एक्टिंग करते हैं और रेसिप्रोकेट करते हैं तो सीन का जो एनर्जी और चार्ज होता है और जो स्टोरी का प्रपल्शन होता है वो बहुत जबरदस्त हो जाता है, एंड दैट इज द फीलिंग यू गेट विद दिस सॉन्ग. अगर आपने नहीं ध्यान से पहले सुना है या देखा है स्पेशली, सुना तो आपने होगा लेकिन अगर देखा नहीं है, आई टेल यू टू वॉच इट अगेन एंड पे अटेंशन टू रणवीर सिंह. बहुत हल्के एक्सप्रेशन और बहुत हल्के से चेंज होते हैं उनके एक्सप्रेशन, ज्यादा नहीं. एंड सेम थिंग विद सारा अर्जुन, सच अमेजिंग, कमाल का काम करा है दोनों ने. एंड विद दैट एक और रिक्वेस्ट है मेरे पास, सो लेट मी प्ले दैट. एंड अगर आप सोच रहे हैं या सुनना चाहते हैं कोई गाना तो आप जानते हैं हमारे स्टूडियो का नंबर क्या है, बताएगी नहीं पा रहे हो क्योंकि हमारे लिसनर्स का तो नंबर पता है, एंड यू कैन कॉल इन विद योर रिक्वेस्ट. इस गाने की रिक्वेस्ट करी है आनंद साहब ने, थोड़ी देर पहले करी थी बट नंबर अब लगा है आपका आनंद साहब.

सच अमेजिंग गाना बताना चाहती हूँ आपको. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ड्रीम होम मॉर्गेज. योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मॉर्गेज. बिल्कुल, जो आपके सपनों का घर है, आपके सपनों का घरोंदा है, कैसे आप पा सकते हैं, कैसे एक ड्रीम होम मॉर्गेज आपकी मदद कर सकता है, ये बताने जा रही हूँ. और ये भी बताने जा रही हूँ दैट सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेज हैज हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इनटू रियलिटी विद पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस एंड अ स्मूथ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस. दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स. देयर एक्सपीरियंस्ड टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शंस टेलर टू योर नीड्स वेदर यू आर बाइंग योर फर्स्ट होम, अपग्रेडिंग और रीफाइनेंसिंग. स्टार्ट योर होम ओनरशिप जर्नी विद कॉन्फिडेंस टुडे. एंड नंबर जो है वो आप कॉल कर सकते हैं उनका 9722455626, या फिर आप विजिट कर सकते हैं dreamhomemortgage.com फॉर मोर डिटेल्स. ड्रीम होम मॉर्गेज इज वेयर मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन. क्योंकि घर तो आप पसंद कर सकते हैं, घर तो आप जैसा आपका सपनों का घर है वो आपको मिल भी सकता है, लेकिन खर्चा जो है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, मॉर्गेज एक बड़ा प्रॉब्लम है, और यहाँ पे ड्रीम होम मॉर्गेज स्टेप्स इन. और मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग अच्छी अच्छी रिक्वेस्ट आ रही हैं, और मुझे बड़ा कहते हुए खुशी हो रही है कि जो अगली रिक्वेस्ट है वो हसन साहब की रिक्वेस्ट करी है. जी हाँ, कौन से हसन साहब की रिक्वेस्ट करी है. ऐसा करते हैं, गाना सुनते हैं. ओरिजिनल गाने की करी है रिक्वेस्ट, वैसे धुरंधर में भी है और ये उसके रीमिक्सेस बहुत सारे बन चुके हैं, एंड द मोस्ट रीसेंट इज द धुरंधर रीमिक्स. लेकिन हसन साहब ने कहा कि भाई ये ओरिजिनल वाला ही चला दीजिए, क्योंकि ओरिजिनल की बात अलग ही होती है. और धुरंधर की एक और इंटरेस्टिंग बात हमारे एक लिसनर ने शेयर करी है, वो बताऊंगी आपको थोड़ी देर में. फिलहाल हसन साहब, दिस इज फॉर यू. हसन जहांगीर का गाना.

व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग. मैं भी पूरा एंजॉय कर रही थी, इतना बढ़िया गाना है और लिरिक्स मोहम्मद नसीर साहब ने लिखे हैं. एक बात मैं ज़रूर, जब भी ये गाना मैं सुनती हूँ, एक बात मुझे लगती है कि बड़ा ट्रस्ट करते हैं हसन जहांगीर साहब और मोहम्मद नसीर साहब. एंड इस गाने के ज़रिए मुझे लगता है, क्योंकि इतने सारे लोगों ने इस गाने को पसंद किया है और इतने सारे लोगों ने अपनी महबूबा को शायद याद कर करके गाना गाया, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी फेमस सॉन्ग. एंड इस गाने से इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा हसन जहांगीर साहब पाकिस्तान के बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए. माइकल जैक्सन ऑफ पाकिस्तान उनको कहा जाता है. ही वॉज अ वेरी फेमस, आई मीन ही स्टिल इज, बट बहुत इस गाने से एकदम पॉप स्टार उभर कर आए वो. एंड उसके पहले भी उनके गाने आए थे, बट दिस क्रिएटेड एन इंटरनेशनल सेंसेशन. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये गाने के लिरिक्स मुझे जब भी मैं सोचती हूँ, जब भी मैं सुनती हूँ, मेरे जहन में यही बात आती है कि बड़ा ट्रस्ट करा है कि हवा से इतने सवाल पूछे हैं. वैसे मेरा मन करता है पूछने का ये हसन जहांगीर साहब को कभी कि जवाब मिला आपको हवा ने क्या बताया, पता बताया कि नहीं बताया. बट आई थिंक आई जस्ट फाइंड दिस इमेजिनेशन वेरी इंटरेस्टिंग. और इस तरह के जो लिरिक्स होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन द म्यूजिक एंड द सिंगिंग इज सो कैची दैट ऑब्वियसली इट बिकेम अ सेंसेशन. अगले गाने की रिक्वेस्ट, मेरे पास और भी कुछ गानों की रिक्वेस्ट है, तो अगले गाने की शोहेब साहब ने करी है रिक्वेस्ट. लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ. शोहेब साहब कहते हैं कि वो कराची के, और मैं थोड़ी देर पहले धुरंधर की बात कर रही थी. मैं क्या कर रही थी, धुरंधर तो इतनी फेमस हो गई हैं दोनों ही, द फर्स्ट एंड द सेकंड, कि बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं. सम पीपल आर लाइकिंग, मेनी पीपल आर लाइकिंग, ऑब्वियसली दे हैव बिकम वेरी हिट, बट सम पीपल ऑल्सो हैव डिफरेंट ओपिनियन, बट दैट इज अ गुड थिंग. थोड़ी एक अच्छी डिस्कशन चल रही है धुरंधर के बारे में. तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली. उन्होंने बोला कि मैं कराची का हूँ और कराची के लयारी के जो ये छोटे मोटे गुंडे हैं उनको उन्होंने इतना इंटरनेशनल सेंसेशन बना दिया कि ही फाइंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग. और मैं ऐसा सोच रही थी, बिकॉज आई एम फ्रॉम वेस्ट दिल्ली, तो हमारे भी वेस्ट दिल्ली में बड़े ऐसे यू नो गुंडे कह सकते हो, ऐसे मतलब बड़े ऐसे आवारा किस्म के लड़के हुआ करते थे हमारे इस गली में, उस गली में, ऐसे यू नो मोनू सोनू विक्की इस तरह के नाम के. एंड अगर कोई उनके ऊपर ऐसी कोई धुरंधर टाइप की फिल्म बनाए और इंटरनेशनल या बड़ा उनको वैसे उस तरह का सेंसेशन बनाते, सो आई ऑल्सो फाइंड इट इंटरेस्टिंग. लेकिन दैट ऑल्सो टेल समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी कहानी को उठाकर उसको आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में डायरेक्ट करें, और एक्टिंग और नरेशन और ये सब बहुत ही बढ़िया हो, तो कोई भी कहानी हो वो बहुत इम्पैक्ट छोड़ती है. वो सही इम्पैक्ट छोड़ती है, गलत मतलब वो सबको पसंद आती है नहीं आती वो अलग बात है, लेकिन इम्पैक्ट तो छोड़ती है. विद दैट लेट्स लिसन टू अनदर सॉन्ग शोहेब साहब की रिक्वेस्ट पर. तनु इट्स मनुका, एंड विद दैट वी गोना हेड इनटू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. यहीं पर लौटेंगे, करेंगे और इंटरेस्टिंग बातें. एंड लिसन टू योर सॉन्ग्स, पारो इन द हाउस.

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
2: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
2: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
5: इट्स ट्रू, हम अपने सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
2: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
4: Excuse me. It's called being loyal.
2: It's called being predictable.
4: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
2: And what's so special at Neon Cactus?
4: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
2: Not bad.
4: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
2: Okay, this I didn't expect from you.
4: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
6: हसीना जुल्फों वाले जाने जहां।
7: जुल्फें सिर्फ हवा में नहीं, स्टाइल में भी उड़नी चाहिए। बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट। बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस। मेंशन फनेजिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस। Call Amreen at 214-909-6601
8: or visit their Instagram, Amreen Salon, located at Allen and Frisco.
7: Amreen Salon, style that moves with you.
9: Chicken banana. Chicken banana?
10: Bro, banana nahi, banana. Matlab, make the chicken right.
11: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
12: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Fanesha Radio.

देखिए, हमारे कल्चर में ऐसा कहा जाता है, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, अतिथि देवो भाव, यानी कि जो गेस्ट होता है वो बहुत बहुत ऊपर होता है और उसको बहुत पूजा जाता है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू इंसान से ऊपर का दर्जा इसे दिया जाता है. एंड दैट इज़ समथिंग सेड फॉर समबडी हु विजिट्स योर होम. कोई आपके घर घर आता है, कोई रिश्तेदार आता है, तो उसको आप चाहे बिल्कुल भी नापसंद करते हो, चाहे वो आपको फूटी आंख ना बाता हो, लेकिन अगर आपके घर आया है तो आपको उसे बहुत इज्जत देनी है और बिल्कुल मिठाइयाँ एकदम पेड़े वेड़े सब खिलाने हैं. तो इस तरह का हमारा कल्चर है. एंड ये एक मुझे इंटरेस्टिंग बात भी इसलिए लगती है क्योंकि जो भी गले शिकवे हैं वो भुला कर आप अगर कोई आपके घर आया है तो आप उसका आदर सत्कार करें. एंड दैट ऑल्सो शोज हु यू आर एंड इट शोज ऑन यू. तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है. इसी के साथ मुझे ये भी अच्छा लगता है कि रिश्तेदारों के साथ आप बात करें, बना के रखें, चाहे आपकी बने ना बने, लेकिन कोशिश करें. एंड इसके लिए तो एक दिन भी डेजिग्नेट कर रखा है, एंड वो है आज का दिन. जी हाँ, May 18th इज नेशनल विजिट योर रिलेटिव्स डे. मतलब धमक पड़ी है किसी के घर, कोई आसपास डैलस में रहता है तो बेझिझक. और अगर कोई बोले यार तू ऐसी उठ के क्यों आ गया, अगर आपके कजन वजन कोई भी है तो बोल देना पारो ने बोला था. मेरा नाम ले लेना, कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज दिस इज नेशनल विजिट योर रिलेटिव्स डे. तो ये तो ऑफिशियल डे है, आप तो मतलब इसको फॉलो कर रहे हैं, रूल फॉलो कर रहे हैं. इट इज अ डे टू रिकनेक्ट विद फैमिली मेंबर्स एंड चेक इन ऑन लव्ड वंस. तो आप किसी के घर जा सकते हैं, कोई आपके घर अगर आ रहा है तो उसका आदर सत्कार करिए, चाय पिलाइए और कुछ अच्छे अच्छे समोसे बढ़िया खाना खिलाइए और बाजार से मंगवा के खिलाइए. क्यों बाजार से मंगवा के खिलाइए? क्योंकि आज का दिन कुछ और भी है और उसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगी. बट फॉर नाउ नेशनल विजिट योर रिलेटिव्स डे. अगर रिलेटिव्स दूर रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं, किसी और शहर में यूएस के रहते हैं, कोई बात नहीं, कॉल कर लीजिए. दैट इज ऑल्सो गुड. रिकनेक्टिंग इन एनी वे दैट यू कैन. सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी के भी थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. द पॉइंट इज दैट यू आर रिमेंबरिंग दैम एंड यू आर कनेक्टिंग विद दैम, क्योंकि आज का दिन ऑफिशियली कनेक्ट करने वाला दिन है, रिकनेक्ट करने वाला दिन है. अगर कोई गाना सुनना चाहते हैं, हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, नंबर तो आप जानते हैं, 9723555 है स्टूडियो का नंबर.

दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स. और एजी फिनटेक्स के बारे में बताना चाहती हूँ आपको. दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. ये ट्रस्टेड है, एफिशिएंट है, एंड दे गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. नंबर आप कॉल कर सकते हैं इनका 4699429888 और विजिट agfintechs.com. तो यस, इफ यू आर ज्वाइनिंग मी नाउ, लेट मी टेल यू, दिस इज अ ब्यूटिफुल मंडे इवनिंग. घड़ी में हुए हैं इस वक्त 7:40, एंड इफ यू आर रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क, वेल लेट मी बी द फर्स्ट वन टू वेलकम. क्योंकि देखिए, फनी शो सुनते आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि घर तो आप पहुंच ही गए हैं. आई मीन इमोशनली घर पहुंच गए हैं. अब घर का मतलब है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल से दिस टू मी व्हेन दे लिसन टू फनीशिया, कि ऐसा लगता है कि घर वापसी आ गई है. एंड लॉट ऑफ द सॉन्ग्स और कुछ गाने तो मैं भी जो ये गाने चलाती हूँ इनको सुन के मुझे भी ऐसा लगता है कि आई एम बैक टू माई चाइल्डहुड और बैक टू द टाइम व्हेन आई वाज इन इंडिया. तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो घर वापसी तो वैसे ही हो गई है. बट यस, ऑफिशियली आप घर अगर जा रहे हैं, सो आई वॉन्ट यू टू लिसन टू द सॉन्ग्स दैट यू वॉन्ट टू लिसन. सो इफ यू वॉन्ट कॉल एंड यू कैन डू दैट 972355555. हमें नहीं कॉल करें लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन किसी रिश्तेदार को कॉल कर जरूर करिए अगर आज नहीं किया है. और अगर आप स्पेशली अगर कोई रिश्तेदार है जिनसे आपकी काफी टाइम से मुलाकात नहीं हुई या बात नहीं हुई है, बिकॉज टुडे इज नेशनल विजिट योर रिलेटिव्स डे. थोड़ा सा ही वक्त बचा है शाम में, तो हो सकता है कि किसी के घर धमकना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाए और कोई दूर रहता है तो पॉसिबल भी ना हो. बट यू कैन ऑलवेज कॉल इन, यू कैन ऑलवेज कॉल एंड यू कैन से टू दैम दैट यू नो दिस इज अ वेरी स्पेशल डे, इट इज अ डे टू रिकनेक्ट. स्पेशली ऐसे रिश्ते जो कई बार थोड़ा सा किसी शेल्फ में धूल खा रहे हैं. हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं, आई फील हम सबके पास, जो कहीं ना कहीं किसी स्टोरेज में बैठे हुए हैं या कहीं धूल खा रहे हैं या कहीं उन पर जंग लग गई है. सो आज का दिन ये है कि उनको निकालें, उनको थोड़ा झाड़ पहुंच के एकदम चमका दें. सो यस, अगर कोई इस तरह का कजन है, मामा का बेटा, चाचा का बेटा, मामा है, चाचा है, दादा है, कोई है जिनसे बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, well, you can always call them. And you know, this is very interesting thing, क्योंकि कई दफा मेरे पास पुराने दोस्त का कॉल आता है, कई बार मेरे किसी कजन का जिससे बहुत टाइम से बात नहीं हुई कॉल आता है, एंड द फर्स्ट थिंग लॉट ऑफ टाइम्स दे डू इज दे अपोलोजाइज कि अरे तुम्हें परेशान तो नहीं किया, तुम बिजी तो नहीं हो, कहीं फनीशा पे शो तो नहीं कर रहे हो. द पॉइंट इज दैट कि पीपल ऑफन फील कि शायद आपको परेशान कर रहे हैं, शायद आपके घर धमक रहे हैं तो परेशान कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं तो परेशान कर रहे हैं. बट रिसर्च हैज शोन इट अदरवाइज. रिसर्च ने यह दिखाया है कि जब आपके कोई पुराने जान पहचान के लोग, दोस्त लोग, अगर कोई कॉल करता है, किसी का अगर कॉल आता है, तो पीपल चाहे वो ऊपर से शायद ना भी दिखाएं बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म, लेकिन अंदर से बहुत खुशी होती है लोगों को. एंड दिस इज व्हाट रिसर्च हैज शोन. तो किसी को थोड़ी सी खुशी ही दे दीजिए कॉल करके.

कोई बात नहीं, अगर पप्पू नहीं डांस कर सकता, पप्पू ने कोशिश करी, वो ही बड़ी बात है। बहुत अच्छा काम किया पप्पू, कीप डांसिंग। मैं तो यही कहूंगी, जो भी हमारे पप्पू लिसनर्स हैं, यानी कि जो ऐसे लिसनर्स हैं जिन्हें लगता है कि वो डांस ही कर पाते, या फिर दुनिया उनको बार बार ये याद दिलाती है कि भैया तुम डांस नहीं कर पाते, वेल डोंट वरी, द की इज दैट यू आर डूइंग आर ट्राइंग व्हाट यू वांट टू डू। एंड इफ यू वांट टू डांस, यस, हमने लास्ट वीक एक सिली डांस या चिकन डांस वाली बात करी थी, तो उसके लिए भी एक नेशनल डे है, निकल गया, कोई बात नहीं, उससे मिलता जुलता फिर दिन आएगा और करेगी पारो उसकी बात। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि अगर कोई आपके घर टपक पड़ता है, कोई रिश्तेदार, क्योंकि नेशनल विजिट योर रिलेटिव्स डे है, तो हो सकता है कि कोई आपके रिश्तेदार भी सुन रहे हों और वो आपके घर आ जाएं। पता चले कि काम से लौटकर आप घर लौटे हैं और उन्होंने कहा, हम पारो को सुनते आ रहे थे, उन्होंने कहा कि रिश्तेदार से मिल लो, तो हमने सोचा चलो भाई गाड़ी घुमाते हैं, तुम्हारे यहाँ जाते हैं, आज डिनर तुम्हारे यहाँ ही होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना ही भूल गई, कि आप खाना मत बनाइएगा घर में, बाहर से ऑर्डर करिएगा फनीशा के पास, आपके पास आपके लिए बहुत सारी रिकमेंडेशंस होती हैं। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि आज एक और दिन है, जी हाँ, May 18th एक और दिन है आप लोगों के लिए, मैं बताना चाहती हूँ, एंड हम सब के लिए, एंड दैट ऑल्सो इज फॉर मी। तो मैंने भी घर जाके बर्तन नहीं मांजने हैं, किसी ने भी नहीं मांजने हैं, आज जो है बिल्कुल बर्तनों की छुट्टी, क्योंकि टुडे इज नेशनल नो डर्टी डिशेज डे, यानी कि दिस इज अ डे इन विच यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम क्लीनिंग डर्टी डिशेज। मतलब आज डर्टी डिशेज की बात ही मत करिए, और आज बाहर खाना खाइए, बाहर का इंजॉय करिए, और किचन को और डर्टी डिशेज को दे दीजिए, अपने हाथों को दे दीजिए थोड़ी सी छुट्टी। अब कुछ लोग बोलेंगे हमारे पास जो डिश वॉशर है, कोई बात नहीं, डिश वॉशर को भी छुट्टी मिलनी चाहिए कभी कभी तो, राइट।

एक बहुत जबरदस्त खबर आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ अबाउट रवि इम्पोर्ट्स वेयर हाउस. सो ऑल राइट डैलस, लिसन अप स्टोर ओनर्स, दिस वन्स फॉर यू. रवीज समर किक ऑफ इज बैक. मार्क योर कैलेंडर्स फॉर जून 3rd एंड 4th, 9 AM to 5 PM. और इस साल यानी कि दिस ईयर इट्स गोइंग टू बी बिगर. द एंटायर वेयर हाउस टर्न्स इनटू अ ट्रॉपिकल एक्सपीरियंस. एक्सपेक्ट क्रेजी डील्स, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड फ्री गिफ्ट्स ऑल डे लॉन्ग. यू कैन मीट वेंडर्स, discover bestsellers and stock up like never before. Ravi's Import Warehouse. कहाँ पर है ये बता देती हूँ आपको. 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas में है ये. और अगर आपको इसका zip code चाहिए तो 75229. थोड़ी देर में हम एक give away भी करेंगे आप लोगों के साथ. 9 बजे तक रहूंगी. जिन लोगों ने अभी join किया है उन्हें बता दूं, 7 से चल रही थी हमारी, चलती है usually हमारी गाड़ी, लेकिन आज मैं थोड़ा सा जल्दी आई थी. यानी कि 6:40 से पारो आप लोगों के साथ है. आप लोगों की गाने चला रही है and I'm loving your calls and the things that you share with me. I do want to tell you that it's all very special to me. और अगर हमारे कुछ listener हैं जिन्होंने अभी join किया है और अभी तक नहीं call करने का मौका मिला है, well you know the number 9723555555. और देखिए फनिश और पारो भी तो आपकी रिश्तेदारी है. आवाज का तो रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, इमोशनल रिश्ता है हमारा. तो चूंकि आज है नेशनल कॉल एंड कनेक्ट योर, कॉल भी नहीं कह सकते एक्चुअली, ये विजिट योर रिलेटिव्स है, लेकिन मैंने इसे कॉल कर दिया क्योंकि हमेशा आसान नहीं होता विजिट करना, लेकिन कॉल करना और किसी का हालचाल पूछना भी मेरे हिसाब से कनेक्ट करना ही है. दैट इज आज की डेट में वो भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि लोग तो कॉल ही नहीं करते ज्यादातर, तो एक आध छोटा मोटा एब्रीविएटेड मैसेज ही डाल देते हैं. तो अगर आप किसी को फुल कॉल कर रहे हैं, मतलब आवाज से उनकी आवाज सुन रहे हैं, अपनी आवाज सुना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है इन टुडेज डिजिटल मीडिया, आई फील, इन दिस डिजिटल वर्ल्ड दैट वी लिव इन. सो यस, यू कैन ऑलवेज कॉल अस बिकॉज हमारे साथ कनेक्ट करना, फनिशा के साथ कनेक्ट करना भी अपने रिश्तेदारों के साथ कनेक्ट करना ही है. 9723555555.

0: एक छोटे से गाना चलेगा और इसके चलते चलते हम एक ब्रेक में निकल जाएंगे और ब्रेक से लौट कर यहीं वापस लौटेंगे। बिग शाउट आउट टू सुमित साहब। सुमित साहब ने कॉल किया क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमें कॉल करिए रिश्तेदारी निभाने के लिए, बिकॉज टुडे इज द डे टू कनेक्ट विद योर रिलेटिव्स एंड फनिश एंड पारो इज योर ओन। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो बिल्कुल मैं पूरा ये डाउट आपका खत्म कर देती हूँ, बिकॉज वी आर योर फैमिली, फनिश इज योर फैमिली एंड वी एंड पारो इज योर फैमिली एज वेल। सो थैंक यू सो मच रिश्तेदारी निभाने के लिए सुमित साहब, एंड विद दिस सॉन्ग विल बी हेडिंग इट टू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। पारो इन द हाउस।
1: Okay.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG FinTax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG FinTax's advisory services.
3: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
9: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
11: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
12: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
11: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
13: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
14: इन प्लेनो।
13: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
15: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
16: If you're ever involved in a car accident, remember these important three tips. First, stay calm. Second, check for injuries and move to a safe place if possible. Third, gather information by taking pictures, exchanging contact information, and insurance details. Always, always file a police report. Remember, never ever admit fault at the scene. Even minor injuries can turn serious, so seek medical attention right away. The law offices of Omar Khwaja specializes in personal injury law, and we are here to help you navigate through the legal process. Call us for a free consultation at 1-833-GET-OMAR or visit our website at attorneyomar.com for your free consultation. We can't wait to hear from you.

वेलकम बैक दोस्तों, यारो मैं हूँ पारो, और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उन्हें बता दें आज दो स्पेशल दिन हैं। और वैसे ये हमारे डायरेक्टली बॉलीवुड के गानों से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हम सब से रिलेटेड हैं। एंड वन इज नेशनल नो डर्टी डिशेज डे, यानी आज जो है बर्तन मत मांजिए। वैसे अगर आप रोज मांजते हैं तो शायद आप नहीं मांजते, तो शायद आप पर तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है, लेकिन आपके घर में जो भी ये काम करते हैं आप उन्हें आज छुट्टी देने के लिए या दे दीजिए या बोल दीजिए कि आने बता दीजिए अगर उन्हें नहीं पता है दैट दिस इज नेशनल नो डर्टी डिशेज डे। एंड दिस इज एक्चुअली अ फन हॉलीडे। हॉलीडे मीन्स लाइक इट इज एन ऑब्जर्विंग डे, इट इज नॉट रियली ट्रूली अ छुट्टी, लेकिन इसको मनाया जाता है आज के दिन। एंड दिस इज अ फन वे टू एनकरेज पीपल टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम क्लीनिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारे घंटे और बहुत सारी जिंदगी किचन में और डर्टी डिशेज में जाती है। एंड या फिर और बहुत इस तरह के घर में, अगर घर किसी का चमक रहा है, घर किसी के कपड़े चमक रहे हैं, स्टार्च्ड हैं और एकदम अच्छे से आयरन है। वैसे ये जरूरी नहीं है कि आपके घर में ही कोई कर रहा हो सकता है आप कहीं बाहर किसी से करवा रहे हो, किसी लॉन्ड्री से करवा रहे हो। कहने का मतलब है कि कोई ना कोई तो कर रहा है, तो आज वो जो भी कोई कर रहा है उसको थोड़ी सी छुट्टी दे दीजिए और उस छुट्टी के साथ अपने किसी रिश्तेदार को कॉल कर लीजिए या उन्हें विजिट कर लीजिए अगर आसपास रहते हैं, बिकॉज टुडे इज ऑल्सो नेशनल विजिट योर रिलेटिव्स डे। पारो इन द हाउस।

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

एक इंटरेस्टिंग बात है इस गाने के साथ. ये 1998 की फिल्म का गाना है, प्यार किया तो डरना क्या. एंड नॉट ओनली दिस सॉन्ग वाज वेरी फेमस, ये फिल्म भी फेमस हुई थी और इसके गाने, ये स्पेशली ये पर्टिकुलर गाना तो बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था. लेकिन इस गाने के साथ सबसे ज्यादा हिट हुआ था ये हुक स्टेप जो सलमान खान साहब अपने बाहों को लहरा के करते हैं. एंड द थिंग इज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि उस टाइम पे ये हुक स्टेप्स का चलन नहीं था. आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, स्पेशली इफ देयर इज एनी कैची सॉन्ग, अगर आप उसको वायरल करना चाहते हैं, उसको हिट करना चाहते हैं, तो कोरियोग्राफर्स आर हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर टू क्रिएट हुक स्टेप्स, स्टेप्स दैट विल लाइक पकड़ के रख लेंगे. वो होता है ना कि आप मछली के लिए बेट डालते हैं तो फिर मछली पकड़ में आ जाती है, तो ऐसा ही कुछ काम होता है कोरियोग्राफर्स के सर पर. उन एक ये जिम्मेवारी होती है कि उनको ऐसे हुक स्टेप्स कर रहे हैं जिससे हमारी जो ऑडियंस है, हम हैं, मैं हूँ, आप सब लोग हैं, हम सब मतलब चिपक जाएं और उसको हम उसको बार बार देखते रहें और उसको कॉपी करने की कोशिश करें और इस तरह से वो वायरल हो जाए. बिकॉज दैट इज द वे टू फॉर दीज सॉन्ग्स एंड दीज एटलीस्ट इन टूडेज डे एंड एज, इन इंटरनेट डे एंड एज, फॉर देम टू बिकम लाइक रियली फेमस एंड हिट. लेकिन ये जमाना इंटरनेट वाला जमाना नहीं है, 1998 का जमाना है और इस समय उस वक्त ऐसा नहीं हुआ करता था. फराह खान ने ये हुक स्टेप बनाया, सो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ लिटिल विजनरी क्योंकि उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था और शायद इसीलिए लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, अपने टाइम के थोड़ा सा आगे था. उस टाइम पे ऐसे हुक स्टेप्स नहीं हुआ करते थे. नॉट ओनली दैट, इट एक्चुअली वॉज रियली सूटिंग सलमान खान अलॉट. फराह खान ने ये पर्टिकुलर हुक स्टेप सलमान खान की पर्सनैलिटी को देखते हुए, इट्स नॉट एनी हार्ड स्टेप, मुश्किल नहीं है, कुछ ज्यादा उसमें नहीं है, लेकिन वो सलमान खान के उनकी जो उनकी फिजिक है, उनकी बॉडी है, उनका करिज्मा है, पूरे मैचो मैन वाली उनकी इमेज थी, ये शर्ट वर्ट उतार के इसको बहुत सूट करा. एंड एज यू ऑल नो, इट बिकेम वायरल. ये तब वायरल हुआ जब वायरल वर्ड इस चीज के लिए यूज नहीं किया जाता था, वो ट्रूली हेल्थ केयर में ही यूज किया जाता था और वायरल का वो मीनिंग नहीं था, तब भी ये गाना वायरल हुआ है.

गल हमेशा मिट्टी मिट्टी बोलनी चाहिए, और आप यानी कि जबान जो है वो बहुत मीठी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इट रियली इम्पैक्ट्स द अदर पर्सन. आई ट्रूली फील दैट. ये जो शब्द होते हैं, और कई बार क्या होता है कि शब्द लोग ये ना याद रखें, एंड दिस इज रिसर्च बेस्ड, ये बहुत रिसर्च इसके ऊपर हो रखी है, दैट पीपल मे नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली वॉट यू सेड. कई साल बीत जाते हैं, लोग भूल जाते हैं एग्जैक्टली वर्ड्स क्या हैं, लेकिन वॉट पीपल डोंट फॉरगेट इज इमोशंस. और कई बार ऐसा भी होता है दैट आपको अगर अपने बचपन की कोई भी आप बात याद करें तो आपको शायद एग्जैक्ट बात ये नहीं याद आएंगी, क्योंकि मेमोरी बड़ी स्लिपरी होती है, लेकिन उस समय जो आपने फील किया था, व्हाट द फीलिंग्स यू हैड, वेदर यू फेल्ट इलेटेड, एक्सेप्टेड, कंफर्टेड, और यू फेल्ट रिजेक्टेड और एम्बैरेसमेंट, जो भी आपको उस समय फील हुआ है 10 साल, कभी भी कोई ऐसी कुछ घटना हुई है जिसकी स्पेशली इमोशनल एनर्जी बहुत ज्यादा थी, आपको वो इमोशंस याद रहेंगे, आपको ये याद रहेगा कि किसी ने आपको कैसा फील कराया था. एंड somebody made you feel good, you will remember that. Somebody made you feel bad, you will remember that. तो ये एक चीज होती है. तो इसलिए कहते हैं कि अच्छे शब्द बोलो, मीठा बोलो, ताकि सामने वाले को हर्ट ना हो, और अपने चाहे जो भी बोला है लेकिन इट्स नॉट द कंटेंट दैट मैटर्स, बट इट ऑल्सो द फीलिंग दैट हाउ यू मेक द अदर पर्सन फील दैट मैटर्स अ लॉट मोर. क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि लोग ऊपर से बड़ा मीठा बोलते हैं, ऊपर से जो कंटेंट होता है वो काफी पॉलिश्ड होता है, बट पीपल गेट इट हाउ यू आर मेकिंग देम फील. सो दैट इज आई फील इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लोगों को आप सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा बहुत जैसे कहते हैं कि पूरा एकदम लिपा पुता के अगर आप कुछ बोलेंगे बहुत ज्यादा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, बट आई थिंक द अदर पर्सन क्लियरली गेट्स हाउ यू आर मेकिंग देम फील. और एक बात बताना चाहती हूँ दोस्तों आपको, दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय उमर ख्वाजा विद ट्रैफिक अपडेट्स अराउंड DFW एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट. ये भी आपको बताना चाहती हूँ दैट इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट और अ स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट, देन अटर्नी उमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कंपनसेशन दैट यू डिजर्व. डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल, तो आपको एक अटर्नी चाहिए जो आपकी साइड में हो, आपके मेक श्योर करे कि आप कंपनसेटेड हो, आपको वट एवर यू डिजर्व, एटलीस्ट जो भी डैमेज एंड ऑल दैट, वट एवर यू गेट एडिक्वेटली कंपनसेटेड. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू डोंट पे अंटिल यू विन. फ्री कंसल्टेशन के लिए आप उनका नंबर नोट कर लीजिए, दैट इज 4693005046. ड्राइव कर रहे हैं तो आप कॉल बैक कर सकते हैं, आई विल रिपीट द नंबर, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वेबसाइट पर आप जा सकते हैं attorneyomer.com, यू कैन विजिट दैट एंड यू कैन ऑब्वियसली गेट अ फ्री कंसल्टेशन. एंड इफ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड आप कर सकते हैं रिक्वेस्ट, एंड आई एम गोना बी हियर टिल 9 PM. घड़ी में हुए हैं 8:20.

0: वेरी हैप्पी मंडे इवनिंग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है. वैसे मैं हूं आप लोगों के साथ 6:40. आज थोड़ा सा जल्दी आई थी. 6:40 आप लोगों के साथ चल रही है ये गाड़ी और 9 बजे तक रहूंगी आप लोगों के साथ. फनिश रेडियो, यू आर ऑन एयर.
1: यस, हाय, कैन आई बी ऑफ एयर?
0: यू कैन, यू वांट टू बी ऑफ एयर? ऑफ कोर्स, श्योर. यस, लेट मी टेक यू ऑफ एयर. इन जनाब से तो मैं करती हूँ बात. फिलहाल बताना चाहती हूँ आप लोगों से कि मैं रहूंगी आप लोगों के साथ 9 बजे तक. सो इफ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड यू कैन कॉल इन. आई अगेन वांट टू विश यू अ वेरी हैप्पी मंडे इवनिंग. आई होप यू आर किक स्टार्टिंग योर वीक विद अ क्विक माइंडसेट शिफ्ट. और अगर थोड़ी सी जरूरत है थोड़े से माइंडसेट शिफ्ट की या फिर एनी मोटिवेशन, एनीथिंग, एनी एनकरेजमेंट, एनीथिंग दैट आई कैन डू टू बूस्ट योर मंडे, आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट. पारो इन द हाउस.

0: वैसे तो चल्ला का मीनिंग डिफरेंट होता है पंजाबी में, बट इन दिस रेफरेंस स्पेशली ये बड़े मस्ती में घूम रहे हैं शाहरुख खान इस गाने के साथ. एंड आई थिंक दिस इज लंदन, लंदन की शूटिंग है यहाँ पर. एंड इट इज़ अबाउट रोमिंग फ्रीली. और मैं मंडे मॉर्निंग कुछ इसी तरह से मुझे लगता है कि इट इज़ अ डे टू स्टार्ट, शुरू हो गया है. अब आप जो भी आपका ये हफ्ता है, द एनर्जी हैज स्टार्टेड राइट हेयर राइट नाउ ऑन मंडे इवनिंग. मंडे मॉर्निंग हो जाती है लेकिन मैं तो इवनिंग आती हूँ ना. So your Monday thoughts determine your entire week. तो आप positive रहिए, और अभी तक अगर नहीं थे positive तो कोई बात नहीं, Monday शाम पारो के नाम, यानी कि थोड़ी सी positivity अभी तो आ जानी चाहिए, काफी ज्यादा आनी जानी चाहिए, क्योंकि पूरे हफ्ते को fuel देना है. और थोड़ी सी देर में एक break में जाने वाले हैं विमरान साहब, आपका गाना अभी मैं चलाती हूँ break से वापस लौटते ही, और उसके साथ जुड़ा होगा हमारा giveaway in a little bit. We'll be back right here.
1: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
2: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
4: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
5: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
4: K2 ड्राइव मतलब
5: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लव फील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है.
4: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
5: 100%
6: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2 ड्राइव.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
7: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
9: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
10: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m. Join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a Pan India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DFW.
3: For booth and sponsorship contact, admin@ambuj.us.

वेलकम बैक. वी आर इन द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द शो. एंड अगर मैं बहुत एक्साइटेड लग रही हूँ तो इसलिए नहीं कि लास्ट 30 मिनट है. वो होता है ना जब वेन यू आर इन लाइक इन स्कूल और कॉलेज में आप एंड यू नो इट्स लाइक द लास्ट पीरियड, तो सबके चेहरे पे एक एक्साइटमेंट होता है. द होल डे दे मे बी वेरी टायर्ड, द स्टूडेंट्स एंड ऑल दैट, बट लाइक लास्ट आवर में बहुत एक्साइटमेंट होता है. बट नो, दिस इज माई एक्साइटमेंट. हैज इफ यू हैव बीन लिसनिंग टू मी सिंस 6:40, यू मस्ट हैव रियलाइज कि नहीं, पारो का एक्साइटमेंट हमेशा अच्छा ही रहता है. इट इज नॉट दैट इट इज द लास्ट 30 मिनट, दैट इज व्हाई आई एम एक्साइटेड. बट आई हैव बीन एक्साइटेड एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड बिकॉज ऑफ द गिव अवे, स्पेशली क्योंकि लिटल वाइल बैक आई टोल्ड यू दैट टुडे इज नेशनल नो डर्टी डिशेज डे, विच मीन्स दैट यू शुड ईट आउटसाइड एंड यू शुड नॉट कुक और यू नो किचन में अगर आप कुक करेंगे खाएंगे तो मेस तो होगा, डर्टी डिशेज होंगी, डर्टी डिशेज होंगी तो आपको क्लीन करनी पड़ेंगी, तो आप आज का दिन कैसे सेलिब्रेट करेंगे. द पॉइंट इज दैट टुडे इज अ फन डे विच गिव्स यू छुट्टी टू ईट आउटसाइड. लेकिन पारो ने ईट आउटसाइड तो बोल दिया लेकिन कोई मजेदार जगह नहीं बताई. वेल, फन पिज्जा किचन के बारे में बताती हूँ और बताती ही नहीं हूँ, इस गिव अवे भी देती हूँ. जिमरान साहब कॉल्ड फॉर अ सॉन्ग एंड दैट गिव मी एन आइडिया दैट आई रियली वॉन्टेड टू टाई दिस गिव अवे टू दैट सॉन्ग. सो लेट मी टेल यू फर्स्ट अबाउट फन पिज्जा किचन एंड दिस गिव अवे एंड देन एंड अ लिटिल बिट आई विल टेल यू अबाउट द क्वेश्चन एज वेल. लेकिन पहले आप मेरी कॉल्स बजने लगी हैं, बट आई वॉन्ट यू टू वेट फॉर द क्वेश्चन बिकॉज इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो इफ यू आर क्रेविंग समथिंग चीजी विद अ देसी ट्विस्ट, फन पिज्जा किचन इज वेयर फ्लेवर मीट्स फायर. फॉर ऑल माई वेजी लवर्स लाइक मी हु आर वेजिटेरियन, दे कैन ट्राई द अचारी पनीर पिज्जा पैक्ड विद द टैंगी अचार पंच एंड सॉफ्ट पनीर मेल्टिंग इन स्पाइसी मैजिक. और जो मीट लवर्स हैं उनके लिए तंदूरी चिकन पिज्जा इज प्योर स्मोकी परफेक्शन स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर टू योर taste buds. So whether you like it bold or beautifully balanced, ek slice har kisi ke liye hai. Wahan intezar kar raha hai Fun Pizza Kitchen mein. Garam garam jaiye khaiye. For details visit funpizzakitchen.com. And how can you win $10 gift card? Important cheez hamesha aap jante hain, ye giveaway aapne is show mein ya kisi aur show mein pichle ek mahine mein nahi jeeta ho. If you have won this in the last one month, then this disqualifies you. And you will need to go to Frisco Fun Pizza Kitchen Frisco location and collect the gift card. But first listen to the question because I'm getting some calls but I have not told the question yet. So agla jo gana chalega, ji ha, agla jo gana chalega wo ek film ka naam aapko film ka naam nahi batana hai. This film ka naam bahut aaram se aap bata denge when you listen to the song. Ye 2019 ka hai gana and film ka naam to aap bata denge, but that is not the question. The question is ki ye jo original film hai, 1970s ki original film hai, uske teen कौन थे, तीन मेन कैरेक्टर्स कौन थे. लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग एंड देन यू विल नो विच फिल्म आई एम टॉकिंग अबाउट. एक नाम मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, संजीव कुमार. हरी भाई, संजीव कुमार के साथ दो दो हीरोइंस थी, कौन थी वो. 9723555555 द फर्स्ट पर्सन टू गिव द आंसर इज गोना विन $10 गिफ्ट कार्ड टू फन पिज्जा किचन.

0: फन पिज्जा किचन नॉट फन पिज्जा फनेशा रेडियो. हाँ जी फनेशा रेडियो
1: योर ऑन एयर. टू हीरोइंस के नाम है विजय सिन्हा और रंजीता कौर.
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट सर, बट आई गॉट द विनर, बट थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग. फनेशा रेडियो योर ऑन एयर.
2: हाय.
0: हाँ जी गो अहेड.
2: जी मैं श्रेया बोल रही हूँ.
0: हाँ जी श्रेया जी.
2: जी तो सही जवाब है मुनमुन सेन और दूसरी रूपा गांगुली.
0: नहीं नहीं ये नहीं है, बट थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग. और बताना चाहती हूँ आपको, हमारे जो विनर हैं वो अशोक पटेल साहब है, द फर्स्ट पर्सन टू गिव द राइट आंसर. और इसीलिए मैं कहती हूँ कि सवाल आप सुन लीजिए, क्योंकि कई बार लोग कॉल करते हैं बट दे आर गिविंग सम रॉन्ग आंसर और हमारे लाइंस बहुत बज रही होती हैं. लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग, सो इफ यू डोंट गिव द राइट आंसर वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट पर्सन. तो ये मैं इसलिए सिर्फ बताती हूँ क्योंकि समटाइम्स यू मे फील कि हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वन वी हैव गिव अवे वी हैव टू मूव फास्ट सो दैट एवरीबडी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी. इफ यू डोंट गिव द आंसर द नेक्स्ट पर्सन इट गोज टू द नेक्स्ट पर्सन. थोड़ा सा फायर जैसा, फायर रैपिड फायर जैसा राउंड होता है, एंड दैट्स जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीबडी गेट्स द चांस. 1978 की फिल्म है पति पत्नी, और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर फिल्म है. और ये मुझे इसलिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है बिकॉज इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हजारों जमाने से चला आ रहा है. जब से मुझे लगता है ये वेडिंग का इंस्टीट्यूशन है, मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, पति पत्नी है तो वो भी आ ही जाता है, आ जाता है, आ जाती है, डिपेंडिंग ऑन विच एंगल यू आर लुकिंग फ्रॉम. तो ये पति पत्नी और वो का जो ये कहानी है, ये बहुत फेमस हुई थी 1978 की. संजीव कुमार, मैंने आपसे आपको बता दिया था संजीव कुमार एक है, और पूछा था मैंने कि दो और कौन है, विद्या सिन्हा एंड रंजीता कौर, दे आर द राइट फोक्स. घड़ी में हुए 8:40, रहूंगी आप लोगों के साथ 9 बजे तक. बोलना चाहती हूं मैं आपसे दैट प्लीज कनेक्ट विद अस ऑन फनीशा. फनीशा के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फनीशा रेडियो पर, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ न्यूज, हमारी जो मूवी रिलीजेस होती हैं, हमारे बहुत सारी डील्स होती हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग गिव अवेज, लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन फाइंड देयर. एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद योर्स ट्रूली, तो मुझे भी आप फॉलो करिए, एंड यू कैन डू दैट ऑन फेसबुक व्हिच इज पारो कौशिक, एंड इंस्टाग्राम में प्रिंसेस पारो 27. पारो इन द हाउस.

ये ओरिजिनल का थोड़ा रीमिक्स वर्जन है एंड दिस इज वेरी पॉपुलर सॉन्ग. और मुझे जब भी मैं इस गाने का एक पिक्चराइजेशन देखती हूँ, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दिस पिक्चराइजेशन, उस जमाने के स्पेशली संजीव कुमार साहब इतने नेचुरल एक्टर थे, तो उनके और भी आप देख सकते हैं पिक्चराइजेशन या गाने, बट ये पर्टिकुलर गाना तो बहुत ही ज्यादा हिट हुआ है. और ये बाथरूम में बैठ के ना रहे हैं वो हमने बेटे के साथ, एंड दिस इज सच अ फन टाइम. उस याद आ जाता है जब वो बाल्टी वगैरह ऐसे लोग नहाया करते थे. अभी भी कई बार कई जगहों पे ऐसे ही होता है, बट दिस इज अ लिटिल डेटेड, राइट, 1970s का है ये, वो बाथरूम एंड ऑल दैट. बट व्हाट आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग इज कि आजकल लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे फिल्टर्स यूज करते हैं, लॉट ऑफ फिल्टर्स दे यूज विद इंस्टा एंड लॉट ऑफ अदर सोशल मीडिया पिक्चर्स, फोटोज में भी बहुत सारे फिल्टर्स आ जाते हैं, पता नहीं चलता असली चेहरा कौन सा है और कितने सारे मास्क लगे हुए हैं. और कई बार लोग थोड़े कम फिल्टर यूज करते हैं या थोड़ा सा नेचुरल करने की कोशिश करते हैं, तो बोलते हैं अनफिल्टर्ड लुक, अनफिल्टर्ड लुक. लेकिन मुझे लगता है कि ये गाना आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल अनफिल्टर्ड लगेगा. दैट इज ट्रूली अनफिल्टर्ड. एंड संजीव कुमार साहब वॉज नोन फॉर दैट. ही वॉज अ टोटल अनफिल्टर्ड, मतलब द वे ही इज द वे ही इज, एंड एकदम कोई ऐसा नहीं दैट ही हैज टू प्रिटेंड टू बी समबडी और कुछ भी. मतलब जैसा रोल है उसके लिए डेफिनेटली वो मेकअप एंड ऑल दैट वो सब तो करते थे, नो डाउट अबाउट दैट. बट व्हेन इट कम्स टू कॉन्शियस, एक सोशल कॉन्शियस जो होता है ना, कॉन्शियसनेस या उस तरह का, या जिसकी वजह से बहुत सारे लोग दबे जाते हैं, मरे जाते हैं, संजीव कुमार साहब उससे बड़े हटकर थे. बड़े द वे ही यूज टू लिव हिज लाइफ रिफ्लेक्ट्स थ्रू दिस सॉन्ग एंड थ्रू अ लॉट ऑफ हिज परफॉर्मेंसेज, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. मतलब इस बंदे को जीना जैसे जीना है अपनी मर्जी से आता था, एंड दैट इज देयर इज समथिंग वन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल अबाउट संजीव कुमार साहब. आई एम गोइंग टू टेल यू इन अ लिटिल बिट. अगेन दोज हू हैव जॉइंड जस्ट नाउ, हैप्पी मंडे इवनिंग.

शोले जब फिल्म बनी है 1975 की क्लासिक शोले, दैट टाइम द हाईएस्ट पेड एक्टर इन दैट फिल्म वाज धर्मेंद्र. ही गॉट 1.5 लाख बिकॉज धर्मेंद्र वाज अ सुपरस्टार एट दैट टाइम. सबसे पहले उन्हीं का करियर शुरू हुआ है बाकी सब लोगों से जो इस फिल्म के किरदार थे, बड़े बड़े जो एक्टर्स थे, जो मेन एक्टर्स थे, उनमें से सबसे पहले तो धर्मेंद्र ही सुपरस्टार बने थे. एंड ही वॉज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड एंड वेरी पॉपुलर एंड बहुत, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है दैट ही वॉज द हाईएस्ट पेड. लेकिन आप जानते हैं नंबर टू पे कौन था? नंबर टू पे थे संजीव कुमार जी, हाँ हरी भाई जिनको कहा जाता है. एंड ही गॉट वेरी क्लोज टू धर्मेंद्र, 1.5 लाख धर्मेंद्र साहब को मिला, तो संजीव कुमार को 1.25 लाख मिला. अमिताभ बच्चन थोड़ा सा पीछे थे 1 लाख, उनको टाइम लगा थोड़ा आगे बढ़ने में. एंड हेमा मालिनी 75,000, अमजद खान साहब तो बिल्कुल नए थे, 50,000 उनको मिले. कहने का मतलब ये है कि जो ये शोले फिल्म थी उसमें द नेक्स्ट कंटेंडर जस्ट आफ्टर धर्मेंद्र वॉज संजीव कुमार. एंड इंटरेस्टिंगली संजीव कुमार साहब एट दैट टाइम वॉज वेरी पॉपुलर. ही वॉज मच बिगर नेम एंड एस्टैब्लिश देन अमिताभ बच्चन. उस धर्मेंद्र के थोड़ा सा

Interestingly, Sanjeev Kumar Sahab at that time was very popular. He was a much bigger name and established than Amitabh Bachchan. Us Dharmendra ke thoda sa hi piche the wo. Especially kyunki thoda baad mein aaye the aur filmein kam thi Dharmendra sahab ke bajaye. But he was very close in jaise kehte hain ki wo box office ya us tarah ka jo unka how much directors wanted him to be the lead. He was right after Dharmendra in that. लेकिन इंटरेस्टिंग बात आप ये जानते हैं कि ही वांटेड टू गेट द रोल ऑफ ठाकुर. ये चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि थोड़ी देर पहले हम पति पत्नी और वो और संजीव कुमार साहब की बात कर रहे थे. बिकॉज व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट संजीव कुमार साहब दैट ही नेवर चेज्ड स्टारडम और फेम और मनी और रियली एनीथिंग. व्हाट ही रियली केयर्ड अबाउट इज एक्टिंग. अच्छा रोल, अच्छी एक्टिंग. और उनको जो ओल्ड लोगों की एक्टिंग है, जो जैसे ठाकुर की है या काफी थिएटर में भी जब वो काम करते थे तो ही यूज टू सीक आउट रोल्स दैट आर मच ओल्डर देन हिज एज. मतलब वो अगर 25 साल के तो 50 साल 60 साल के आदमी की एक्टिंग करना चाहेंगे. एंड द रीजन बिहाइंड दैट वॉज दैट ही रियली लव्ड एक्टिंग एंड ही रियली लव्ड टू डू चैलेंजिंग रोल्स. उनको जो आप जो खुद हैं उससे अगर बहुत अलग करेंगे तो इट बिकम्स चैलेंजिंग एंड ही यूज टू रियली इंजॉय दैट. तो संजीव कुमार साहब की मुझे बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि टोटली अनफिल्टर्ड व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, लुक्स एंड लिविंग लाइफ.

By Dr. Mandeep Acharya, Lanoxy Medical, it's LUNOXY. Lanoxy Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing, x-rays, CT scans, cardiac diagnostics, and Himalayan Med Spa services. All this under one roof. Open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. Appointment ki koi zarurat nahi hai. And with that, let's listen to this amazing song. Mujhe aisa lagta hai, jab bhi main is gaane ko sunti hoon, and the peak का गाना है, इसमें ये एक जर्नी पर जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे होते हैं इसमें, ये गाड़ी में एंड इस फिल्म में. एंड आई एक्चुअली रियली फील व्हेन आई एम डूइंग द शो विद यू ऑल. वैसे तो मैं यहाँ स्टूडियो में हूँ, आप लोग बहुत सारे लोग हमारे गाड़ी चला रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कई लोग घर लौट रहे हैं, कई लोग सब्जी भाजी लेने बाहर गए हैं, या फिर दोस्तों से मिलने, या फिर रिलेटिव से मिलने, बिकॉज टुडे इज नेशनल मीट योर रिलेटिव डे. तो कुछ लोग हो सकता है मेरी बात मान कर, पारो की बात मान कर, अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हो, कि या वैसे ही शायद पहले से ही प्लान हो कुछ दोस्तों से रिश्तेदारों से मिलने. कहने का मतलब है कि लॉट ऑफ पीपल लिसन टू अस व्हेन दे आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऑल्दो मैं यहां स्टूडियो में थोड़ी स्टेशनरी रहती हूं, मतलब इतनी भी स्टेशनरी नहीं रहती हूं, मैं भी जब गाने बज रहे होते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर नाच रही होती हूं, इंजॉय कर रही होती हूं, मगर कहने का मतलब है दैट आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम इन द स्टूडियो. बट आई एक्चुअली फील, जब मैं यहां रेडियो शो करती हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी गाड़ी में हूं और आप लोगों के साथ मैं भी दुनिया की सैर कर रही हूं. इट एक्चुअली फील्स लाइक अ जर्नी, एंड दिस जर्नी इज अबाउट टू गेट ओवर, क्योंकि घड़ी में हुए 8:56.

0: क्या करें,
1: कुछ ना करें, फनीशा सुनते रहें, एंजॉय करें, एंड आई होप यू हैव अ लवली इवनिंग। एंड विद दैट कल लौटूंगी आप लोगों के साथ, कल भी थोड़ा सा पहले आप लोगों से मिलूंगी, 7 से 9 तो मिलती हूँ, लेकिन थोड़ा सा पहले आप लोगों से मिलने आऊंगी, यानी कि अराउंड 6:30, 6:40। एंड आई होप दैट यू हैव अ वंडरफुल मंडे इवनिंग। ट्यूजडे इवनिंग तो आपका परफेक्ट होगा ही, क्योंकि पारो के साथ होगा, बट आई रियली होप दैट दिस मंडे इवनिंग इज अ रिमाइंडर दैट यू कैन हैंडल व्हाटएवर दिस वीक थ्रोज एट यू। एक ये मंडे आप लोगों ने बहुत अच्छा बिताया है, एंड दिस शुड बूस्ट योर एनर्जी कि अब अगला पूरे हर दिन जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड विद दैट आरजे पारो साइनिंग ऑफ। बहुत प्यारा गाना है अगला जो आप लोगों को सुना रही हूं, थोड़ा सा ही चलेगा, छोटा सा ही गाना है वैसे तो, एकला चलो।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
6: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8683464611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस
7: लाइए। सब
8: कुछ साफ रख सकते हो,
9: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
10: क्योंकि ये कौन बोला?
9: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
11: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
12: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.

0: tracks that put you on the right track.
1: Stop. Magic touch.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
2: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
4: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डालस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू। And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
7: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
8: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.

0: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
2: Hi this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US 104.9 FM Panacea Radio

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
4: अरे हम जानते हैं दुकान के मालिक को बहुत मेहरबान है पैसे नहीं लेंगे उसके लिए
5: मुफ्त में कोई मेहरबान नहीं होता ये लड्डू के बदले ले जाने कौन जायदाद मांग लो तुम
4: भाई
5: आपने गलत बात है
4: मम्मी शाम को मिलता हूँ
6: मेहरबानी करके कुछ

0: बताइए कहाँ ले चले?
1: पीएससी हेडक्वार्टर्स और फिर सीधा सरकारी अस्पताल।
2: कम से कम समय तो निकाला पटना एग्जाम ने, वरना इनके पास तो टाइम ही नहीं होता किसी से मिलने के लिए।
1: ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं इसलिए रुकते नहीं ना एक जगह।

0: जो बुलाए बैठे हो अकेले? कौन है? कोई बड़ी हस्ती?
1: रूटीन ऑफिस वर्क।
0: रूटीन जब बदलता है तो सबसे पहले बीवियों को पता चलता है।
1: नहीं बता सकते यार,
0: मुझ पे भी भरोसा नहीं है।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

जहीन सी, इतनी रात गए आप हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ तो बात होगी इस चैनल में। रात भर आपके साथ फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनीशा रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

0: दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

0: में।
1: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
2: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
1: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
2: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
3: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Funasia Radio.

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल वन, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल टू, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल थ्री, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।

जान लेके किस्मत में बांटे हैं राहों में कांटे हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: Satisfied. We're winners. Give one reason to come alive.

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: काफी हो।
1: मुझसे तो लड़ ले बेटा, दुनिया से कैसे लड़ोगे?
2: आप ही दुनिया हो
0: मेरे लिए, तुम काफी हो।
3: आपके सुहाने सफर का साथी फन एशिया रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8 6 8 2 3 4 6 4 6 1 1 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
1: Astrology readings for guidance only and results may vary.
2: This is Uday Chopra and you are listening to Fun Asia Radio.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8682-346-4611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
1: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स में वेरी।

0: 104.9 FM Funasia. Funasia. Fun Fana Fun Done.
1: हो पैसे की हो बात तो कड़के बड़े बड़े बन जाते पर ठन ठन गोपाल।

0: क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
2: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं. नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास. साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास.
2: ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG FinTechs.
1: पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन. ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर, द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर ख्वाजा.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your

0: real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
1: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
2: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है, this is home. Welcome to Desi Mandi, Louisville, Dallas का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे, नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह, प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
3: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है।
4: प्लान या होप?
3: मतलब?
4: मतलब है प्लान मतलब स्ट्रेटजी, होप मतलब देखते हैं क्या होता है।
3: ओके, तो मेरा वाला होप है।
4: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं।
3: क्यों?
4: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है।
5: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-2077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com।
6: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
6: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy।
7: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn। समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 945-527-0897 और विजिट astrologerishwar.com।
8: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
9: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
10: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
11: Calculating. Rerouting.
10: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
11: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
10: क्यों?
11: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
10: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
12: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
11: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
13: इफ यू आर एवर इन्वॉल्वड इन अ कार एक्सीडेंट, रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट 3 टिप्स। फर्स्ट, स्टे कॉम। सेकंड, चेक फॉर इंजरीज एंड मूव टू अ सेफ प्लेस इफ पॉसिबल। थर्ड, गैदर इंफॉर्मेशन बाय टेकिंग पिक्चर्स, एक्सचेंजिंग कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एंड इंश्योरेंस डिटेल्स। Always, always file a police report. Remember, never ever admit fault at the scene. Even minor injuries can turn serious, so seek medical attention right away. The law offices of Omar Khwaja specializes in personal injury law, and we are here to help you navigate through the legal process. Call us for a free consultation at 1-833-GET-OMAR or visit our website at attorneyomar.com for your free consultation. We can't wait to hear from you.
14: Ladies and gentlemen, welcome to the show on this lovely Tuesday morning. सबसे पहले तारीफ उस ऊपर वाले की जिसने दुनिया बनाई, चांद सितारे बनाए, जमीन आसमान बनाए, इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया। उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को, इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, याली मदद, एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम टुडे ऑन दिस 19th ऑफ मई।

0: यू आर डिफरेंट, यू नो, सबसे अलग. मेरी बात सुनते हो, यू रियली लिसन. काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता. Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी, दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
1: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodiyal on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodiyalcpa.com.
2: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
3: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
2: K2 ड्राइव मतलब?
3: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लव फील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
2: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
3: 100%
4: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: सब कुछ साफ रख सकते हो
10: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
11: क्योंकि ये कौन बोला?
10: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
12: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
13: बेटा, इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
14: मम्मा, कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है।
13: रोज का सेम प्रॉब्लम।
15: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
16: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग।
15: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
12: कॉल 9726661181 और मेंशन करें फाइनेंशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
17: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
0: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
18: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
19: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

द म्यूजिक ऑफ मिस्टर ए आर रहमान. नंबर हियर इन द स्टूडियोज कंटिन्यूज टू बी 972-235-5555. इफ यू हैव अ सॉन्ग ऑन योर माइंड, आई'd लव टू प्ले इट फॉर यू.

0: Thank you so much for all your calls. That track, ladies and gentlemen, was from the movie Singham, the Badmash Dil track. And the first one to give me the answer was Shreya Srivastav. And Shreya wins. I didn't ask her whether she's vegetarian or non-veg. But dry chili chicken or chili baby corn or Dallas's best butter chicken. It's Red Hot Chili Peppers Chicken Makhan Wala from Red Hot Chili Pepper. So congratulations going out to Shreya. And I'm sure I made all of you quite hungry when I'm describing those items. We will have world news coming up for you a little later in the program. Plenty of music that I have lined up. And if there is a song you want to hear, call me. 972-235-5555.
1: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
2: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
1: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
3: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट
4: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर लॉसिन ट्रैवल फॉर नियरली 30 इयर्स लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स वेकेशन पैकेजेस क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
6: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
7: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
6: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपेटिटर कोर्ट मैच भी कॉल 469-298-3870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
11: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
13: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना जस्ट लाइक दैट When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
14: Door rehkar bhi desi rehna aasan nahi hota, par जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू अपने खाने का टेस्ट तो दिल कहता है दिस इज होम वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर जहां हर देसी एक रूफ के नीचे नॉर्थ से साउथ स्ट्रीट से फेस्टिव हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह प्योर देसी फुल मंडी एक्सपीरियंस अनमैच्ड वैरायटी अनबिलीवेबल डील्स ओनली एट देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज लव्ड बाय डैलस
15: बेटा इतनी देर से बैठे हो होमवर्क हुआ
16: मम्मा कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है
15: रोज का सेम प्रॉब्लम
17: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे लुमडी लर्निंग सेंटर जहाँ बच्चे रटते नहीं समझते हैं लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को प्रॉस्पर एंड मैकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है
18: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13 कंटीन्यूअस फीडबैक ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रांग क्रिटिकल थिंकिंग
17: कन्वीनिएंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को
2: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फनेशिया गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ लुमडी लर्निंग सेंटर बिल्ड मास्टरी अनलॉक पोटेंशियल
19: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

0: Let's talk about this restaurant called the Page 3 Eatery. From sizzling kebabs and flavorful chaat to fusion bites and refreshing mocktails, if you still haven't experienced Page 3 Eatery at Hub 121, you're seriously missing out. This is where bold Indian street food meets modern flair. Whether it's brunch, lunch, dinner, date night, or a foodie meetup, Page 3 brings that perfect mix of flavor, energy, and vibrant vibes. Visit Page 3 Eatery at Hub 121 and explore more at page3eatery.com. I go there all the time. It's yummy food. Please do go check it out. It's called Page 3 Eatery at Hub 121, which is at 121 and Alma, and I think you'll thoroughly enjoy it. The number here in the studios, in case you would like to request a song, is 972-235-5555. And I'm doing an extra hour of the show today because it's Tuesday, the 19th of May. And I do hope that you're enjoying the selection of songs, which partly is by me, and a lot by you who call in. 972-235-5555 is the number in the studio. I'm going to make sure you love the music and you are informed right here on the airwaves of the Fun Asia Network.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
3: हे मैप्स, टेक मी टू माय देसी ग्रोसरी स्टोर।
6: Calculating route. Rerouting.
3: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
6: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
3: क्यों?
6: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं, डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत, find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
3: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
7: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
6: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
8: माय टाइम इक्विरी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय सीपीएस सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequity.com और कॉल सुधीर पाई एट 972-330-2771 और ईमेल wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
9: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
10: भूख लगी है या बस कुछ exceptional खाना है?
11: Street style chaats, rich Awadhi flavors and that classic butter chicken you keep going back to. All under one roof at Page 3 Eatery. Honestly, ye sirf khana nahi hai, it's what your mood is actually craving.
3: A quick bite, a perfect lunch ambience, and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to Page 3, Hub 121 McKinney.
12: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
13: अब तो बस उलझन है साथ मेरे, नींद कहाँ आएगी? सुबह की किरण न जाने कौन सा संदेश लाएगी, रिमझिम सी गुनगुनाएगी या प्यास अधूरी रह जाएगी।

0: Panchthara has a location in Frisco, and now they have a second location. And this one, ladies and gentlemen, is in Allen. I encourage you to get very Punjabi khana right out there at the Panchthara restaurant. And congratulations to B. Patel for being the winner and being the first one to tell me that this song was from the movie Ek Villain.
1: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
2: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
1: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
2: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
4: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
5: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
6: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
5: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit indianattirefrisco.com.
7: मामू देखो क्या हो गया।
8: ओ क्या हो गया?
7: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
8: ओए जर्मन का कमाल है।
7: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
8: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
9: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी?
15: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
16: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहां हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
15: सच में बिल्कुल घर जैसा।
16: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुलचास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
17: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m, join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a Pan India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization, NDAW.
6: For booth and sponsorship contact, admin at ambuj.us.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
3: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mixed veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutter. Rich, bold, no compromises.
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
5: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
6: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
7: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
6: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
7: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
8: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: आर यू सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर एंड हैव प्रॉफिट्स? स्ट्रेस्ड आउट बिजनेस के कुछ सिम्टम्स है, प्रॉफिट्स है बट नो कैश लिक्विडिटी। हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी, डायग्नोसिस क्लियर है। आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
12: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और इस सुहाने सुहाने मौसम का आनंद ले रहे होंगे। ऑफ कोर्स स्कूल जाना होगा, ऑफिस जाना होगा, बट मौसम अच्छा है तो आप थोड़ा बहुत तो बाकी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम लगने लगती हैं। अभी एक्चुअली ये जो शो है, दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाई आरजे मिट्टू, बट उनको आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो उनकी जगह पे मैं आई हूँ, आरजे सिमी। और हमने मिट्टू जी को कह दिया कि भाई आप आराम कीजिए, आप रेस्ट लीजिए पूरा एकदम जोश के साथ, कल दोबारा आइए, तब तक आपके लिसनर्स का ख्याल हम रख लेते हैं, है ना। तो आज का शो जो है बहुत ही फिल्मी होने वाला है, ड्रामेटिक होने वाला और थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल भी होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन गाने की जो सिर्फ सुपरहिट नहीं हुए बल्कि न्यूज चैनल्स, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया डिबेट्स का भी पार्ट बन गए। मतलब कुछ ऐसे गाने जिनके लिरिक्स सुन के लोग बोले ये क्या बना दिया, और वही गाने जो है शादियों में सबसे ज्यादा बजने लगे। तो मैं जो है लिसनर से भी पूछना चाहूँ कि आपको ऐसा कोई गाना याद आ रहा है क्या जो कि बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल था बट एट द सेम टाइम काफी हिट भी था। अगर आपको ऐसा कोई सॉन्ग याद आ रहा है तो आप मुझे कॉल कीजिए और बताइए एट 972-235-5555 पे। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: सच सच बताइए लिसनर्स, जब किसी गाने के अराउंड अगर कंट्रोवर्सी होती है तो क्यूरियोसिटी क्या और नहीं बढ़ जाती? आप ऐसा नहीं सोचते क्या कि अच्छा क्या है ऐसा इस गाने में? फिर आप YouTube पे सर्च करते हो, देखते हो कि अच्छा ऑडियो में प्रॉब्लम है, वीडियो में प्रॉब्लम है, आपको जानने की क्यूरियोसिटी तो पक्का ही जग जाती होगी। एंड अभी अभी हमने आप लोगों से पूछा था कि वो कौन से सॉन्ग्स हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं जब वो रिलीज हुए, लेकिन बाद में जो है काफ़ी हिट भी हुए, और हमें बहुत सारे कॉल्स हैं। थैंक यू सो मच वीना जी, सोनिया जी एंड जलपा जी। और सबके हिट लिस्ट में जो है ना एक ही सॉन्ग था, सबको एक गाना तो पक्का से याद है कि चोली के पीछे क्या है। मतलब 90s में लोग लिटरली इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज भी शादियों में या डीजे जो है इस गाने के बिना इनकम्प्लीट सा लगता है, और इसका रिमिक्स वर्जन भी बन चुका है दोस्तों। एंड एक और सॉन्ग आया बाद में, मतलब रिसेंटली, वेरी सिमिलर टू चोली के पीछे क्या है का थीम कॉन्ट्रोवर्सी, विच इज शीला की जवानी। लोगों ने कहा लिरिक्स बहुत बोल्ड हैं, जिनके भी नाम शीला थे वो लोग काफी ऑफेंड हो रहे थे क्योंकि उनको टीज वगैरह भी किया जा रहा था। तो लेकिन आज देखिए जिम प्लेलिस्ट का वन ऑफ द हिट लिस्ट बन गया है, हर जगह शीला ही शीला है। तो अगर आपको भी ऐसा कोई गाना याद आ रहा हो जो कि काफी कंट्रोवर्शियल रहा हो लेकिन एट द सेम टाइम काफी पॉपुलर रहा हो, तो आप कॉल कीजिए 972-235-5555
1: पे। आज की स्वागत है, हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

अभी अभी रहीम जी का कॉल आया और वो कह रहे थे कि शीला को याद किया और जूली को भूल गए। याद तो हमें मुन्नी भी है, लेकिन एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हैं लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। और उन्हीं में से एक सॉन्ग है, रीसेंट सा सॉन्ग है बेशरम रंग, एक गाना जिसने पूरे इंटरनेट को जो है डिवाइड कर दिया था। और कॉन्ट्रोवर्सी मेनली हुई थी एट द कलर ऑफ द ड्रेस, बिकॉज ऑरेंज कलर का पहना था तो थोड़ा रिलीजन, थोड़ा उसमें पॉलिटिक्स वगैरह भी घुस गया था। कुछ लोगों को विजुअल्स बहुत पसंद आए, दीपिका बहुत पसंद आई, कुछ लोग बहुत ऑफेंड भी हो गए, लेकिन व्यूज़ तो मिलियन में गए भाई साहब। और ऐसी ही कहानी हुई एक और पॉपुलर सॉन्ग की, जो कि है लुंगी डांस। और लुंगी डांस भी जब रिलीज हुआ था तो लोगों ने कहा कि यू नो, इसमें साउथ इंडिया को बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप कर दिया गया है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत लोगों ने कहा कि ये रजनीकांत जी के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिब्यूट है। आपके क्या व्यूज़ हैं इस तरह के कॉन्ट्रोवर्सीज़ के लिए, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 9722355555 पे। और अगर आपको कोई ऐसा गाना याद आ रहा हो जो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा हो, एट द सेम टाइम काफी पॉपुलर भी रहा हो, तो भी हमें कॉल करके बताइए।

0: जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़ावे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
2: माई टाइम इक्विरी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय CPS Sudhir Pai, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequity.com और कॉल Sudhir Pai एट 972-330-2771 और ईमेल wealth@mytimeequity.com टू हेल्प यू अचीव योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव टुडे। टॉक टू Sudhir Pai अबाउट 2025 डिजिटल एसेट और क्रिप्टो फंड।
3: इन्फॉर्मेशन शेयर्ड हियर इज फॉर इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस ओनली एंड डज नॉट कंस्टिट्यूट फाइनेंशियल और टैक्स एडवाइस। इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स रिस्क। ईमेल wealth@mytimeequity.com फॉर प्रोफेशनल एडवाइस।
4: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू, एंड ट्रस्ट अस, दिस इज नॉट योर रेगुलर स्लाइस। Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Oh... उमर ख्वाजा।
6: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
7: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उन सॉन्ग्स के बारे में जो कि काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, उन पे काफी डिस्कशंस हुए हैं, एट द सेम टाइम काफी पॉपुलर भी रहे हैं और हर जगह बजते हुए मिल जाते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उन कंट्रोवर्शियल डबल मीनिंग एक्सपर्ट्स की। जी हाँ, आपने ये सॉन्ग तो सुना ही होगा, भाग डीके बोस। और इनिशियली लोगों को लगा कि ये नॉर्मल फंकी सा गाना है, फिर किसी ने बहुत जल्दी जल्दी इसको बोल के दिखाया बहुत फास्ट और सब शॉक हो गए कि ये तो अब्यूज सा लग रहा है, नहीं? लेकिन बॉलीवुड लिरिसिस्ट भी है ना, काफी जीनियस होते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं कि सेंसर बोर्ड भी कंफ्यूज हो जाए कि गड़बड़ है या नहीं है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि जो है बॉलीवुड टीम को पता होता है कि जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, उतने ज्यादा व्यूज, उतने ज्यादा लिसनर्स। तो ये काइंड ऑफ उनका सीक्रेट फॉर्मूला भी हो सकता है, हु नोज। सो आई एम गोना प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू। और अगर आपको भी पता है ऐसे कोई कॉन्ट्रोवर्शियल पॉपुलर सॉन्ग्स तो हमें फोन कीजिए 972-235-5।

दोस्तों थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट किया जो कि था बॉलीवुड हिट कंट्रोवर्शियल सॉन्ग्स। ये सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे शो को लेके और अगला राउंड जो है वो गिव अवे राउंड है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि अगर आपने इस गिव अवे को जीता तो आपको मिल सकता है देसी मंडी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। जी हाँ, तो आज जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का हैप्पी बर्थडे है, तो मैं जो है क्वेश्चन उनके अराउंड ही करना चाहूंगी और अगर आपको जवाब पता है तो आप कॉल कीजिए एट 972-235-555 पे। और क्वेश्चन ये है कि किस मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फैजल खान का लेजेंडरी रोल प्ले किया था। आई विल रिपीट द क्वेश्चन, किस मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फैजल खान का लेजेंडरी रोल जो है प्ले किया था। आपको मूवी का नाम बताना है मुझे एट 972-235-555 पे। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।

अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

हाँ जी, मुझे लगता है कि ये जो बाहर बारिश हो रही है ना, ये इनके यार की वजह से ही हो रही है. अच्छा जी, तो हम अभी अभी गिव अवे राउंड हमने क्लोज किया है, और इस सॉन्ग के पहले हमने आपसे पूछा था कि वो कौन सी मूवी है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फैजल खान का लेजेंडरी रोल प्ले किया था. उसका सही जवाब है गैंग्स ऑफ वासेपुर, और ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों ने इस सवाल का सही जवाब ही दिया है. बहुत सारे कॉल्स आए, थैंक यू सो मच. और जो इस शो के, इस गिव अवे के विनर हैं, वो हैं मिस्टर पुनीत कोचर जी. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है देसी मंडी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर. आपको लुइसविल जाना है, वहां पे अपना हैम्पर कलेक्ट करना है. हमें 24 to 48 hours दीजिए ताकि हम आपके डिटेल्स जो है देसी मंडी में सबमिट कर दें. और यू नो, यू कैन जस्ट कॉल देसी मंडी इफ दे आर रेडी विद योर हैम्पर एंड यू कैन गो एंड कलेक्ट. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन पुनीत, यू हैव won today's giveaway round. And thank you to all the other listeners who participated in this giveaway. We have a lot more coming up. Do not worry. Stay tuned to Funasia Radio.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं, तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439. If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
11: बेटा, इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
12: मम्मा, कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है।
11: रोज का सेम प्रॉब्लम।
13: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर, जहाँ बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
14: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग।
13: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
15: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। लुमडी लर्निंग सेंटर, बिल्ड मास्टरी, अनलॉक पोटेंशियल।
16: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
17: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit SIUTNA.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.

दोस्तों स्टूडियो में वक्त हो गया है 12:14 और ये सेगमेंट जो है इसमें आती है हमारी मीठी मीठी सी आरजे मिठू, बट उनकी तबीयत आज ठीक नहीं है तो उनकी जगह मैं आई हूँ यानी कि आरजे सिमी। और इसमें ना उनकी कोई गलती नहीं है, गलती तो जो है पूरे इस डैलस की वेदर की है। मतलब इतना अनप्रेडिक्टेबल वेदर, कभी धूप कभी छाव कभी बारिश। तो दोस्तों आप अपना ख्याल ज़रूर रखें और अपने बच्चों का भी, ताकि वो बीमार ना पड़े। और दिस पार्ट ऑफ द शो इज़ ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स विच इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस। जी हाँ, ये जो है ऑफर करते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विथ द अनटैप्ड पोटेंशियल आपके इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स के लिए एज वेल एज आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिए भी। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड हैं, इफ़िशियंट हैं अपने काम में और आपको फ्यूचर के लिए बिल्कुल रेडी कर देते हैं। तो अगर आपको इनकी कोई ऑफर या इनसे इनके बारे में कोई और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं एट 4699429888 या फिर आप विजिट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट जो कि है agfintax.com। तो डैलस वेदर से सावधान रहिए, लेकिन अच्छे अच्छे गाने तो आपको कंटिन्यू करना ही चाहिए सुनने का।

दोस्तों, बाहर बहुत ज्यादा बारिश वगैरह हो रही है, मौसम हो गया है बारिश का, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है सेफली ड्राइव करें और कोशिश करें कि काफी सेफ आप रहें. अब फिर भी अगर ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है, या कार या किसी भी ट्रक एक्सीडेंट में आप इन्वॉल्व हो जाते हो, या फिर किसी भी स्लिप या फॉल इंसिडेंट में, तो आप अटॉर्नी ओमर ख्वाजा को कंसल्ट करें, बिकॉज ही विल हेल्प यू फाइट योर केस एंड गेट द कंपनसेशन दैट यू डिजर्व. क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह से डील करना ना काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है कई दफा, तो अमर ख्वाजा विल इंश्योर कि आप जो है आपका स्ट्रेस फ्री रहे पूरा प्रोसेस और आपके कॉम्पनसेशन भी मिल जाए. तो एंड ऑल्सो यू डू नॉट हैव टू पे अनटिल एंड अनलेस यू विन द केस. सो अगर आपको किसी तरीके का फ्री कंसल्टेशन चाहिए फ्रॉम अटर्नी ओमर ख्वाजा या उनकी टीम से, तो आप कॉल कीजिए 4693005046 या फिर विजिट कीजिए attorneyomar.com. एक बार और नंबर बोल देती हूँ, 4693005046 पे, और उनका वेबसाइट है attorneyomar.com. और दोस्तों, मैं आपसे बस इस गाने और एक ब्रेक के बाद मिलूंगी और शुरू करेंगे हमारा शो, विच इज आफ्टरनून अड्डा विद आरजे सिम्मी.

0: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
1: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
2: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
1: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
3: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
0: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
5: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
6: विजिट psychicramnath.com। कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
1: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
3: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
1: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
3: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
6: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself, free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
7: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
7: ये क्या होता है?
8: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
1: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
9: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
10: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
6: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
11: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
1: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
11: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
12: Mubarak Eid Mubarak.
13: Bazaar is hosting Grand Chandrad Super Sale Eid Expo on Tuesday, May 26th at Frisco Hall Events Center from 12 p.m. to 12 a.m. 50 plus boutiques from different states, varieties of food vendors, food trucks, kids rides, henna artists and much more. Free entry and free parking. For booth and sponsorship, call or text Grand Bazaar organizer Sharmeen Hussain at 214-592-5259. Frisco Hall, located at 121 and Independence Parkway.

दोस्तों, मैं जब भी जारा के स्टोर्स में जाती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में यही गाना बज रहा होता है, जरा जरा महक। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो आफ्टरनून अड्डा विद मी, यानी कि आरजे सिमी, एके आरजे देसी गर्ल। अगर आप लंच ब्रेक में हो, ऑफिस का काम अवॉइड कर रहे हो, या सिर्फ क्लास या लाइब्रेरी में सीक्रेटली ईयरफोन्स लगा के ये शो सुन रहे हो, तो आप सबका स्वागत है जी आज के टॉपिक पे, जो कि है गूगल या चैट जीपीटी का सर्च हिस्ट्री। हाँ जी, वो जगह जो इंसान की असली पर्सनालिटी को एक्सपोज कर देती है। भले ही सोशल मीडिया पे हम सब क्लासी और सैसी लगे, पर गूगल या चैट जीपीटी पे हम सब सेम होते हैं, और हमारी सर्चेस भी कुछ इस प्रकार की होती हैं। How to lose 5 kg in 3 days? Can overthinking cause headache? Lyrics of that one song? How to reply to? Okay. अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी लेटेस्ट जो है गूगल या चैट जीपीटी की जो सर्च हिस्ट्री रही है वो क्या रही है। आई एम एक्सपेक्टिंग सम फनी, वियर्ड एंड इंटरेस्टिंग आंसर्स। कॉल मी एट 972-235-5555 पे।

ये देसी गर्ल आपको बताने वाली है देसी मंडी के बारे में, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर इन द टाउन। और देसी मंडी लेके आए हैं आपके लिए अमेजिंग ऑफर्स। अगर यू नो आपको लग रहा है कि आपको कहाँ पे खाने का और ग्रोसरी स्टोर जो है आसपास कहीं ऐसा ऑप्शन मिल जाए विच इज लाइक माई गो टू प्लेस, तो देसी मंडी इज डेफिनेटली वन ऑफ द गुड ऑप्शन फॉर यू। और ये वीक जो है उनके पास काफी अमेजिंग ऑफर्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंडे और वेंसडे को बाय वन गेट वन फ्री है ऑन बिरयानी, नूडल्स एंड फ्राइड राइस, एंड ट्यूजडे एंड थर्सडे को बाय वन गेट वन फ्री है ऑन डोसास एंड चाट्स। और ये जो है मतलब इट्स सच अ गुड ऑफर, ज्यादा से ज्यादा फ्लेवर और ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स, वो भी आप फुल्ली लाइक फुल वीक कवर्ड हो, इमेजिन। बट ये है आपका 5 PM से 9 PM तक एवरी वीकडे, मतलब कि आपका स्नैक और डिनर जो है मोटा मोटी कवर हो जाएगा, कोई मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं तो जो आप स्टोर पे पता कर सकते हैं। और देसी मंडी जो है, जिन लोगों को नहीं पता है, ये लोकेटेड है लुइस विल में, ठीक है, तो बिल्कुल जाइए और इस ऑफर का आनंद उठाइए, यूटिलाइज कीजिए। और हम आपसे बातें कर रहे थे गूगल और चैट जीपीटी के सर्च हिस्ट्री के बारे में, और उनको लाइक गूगल या चैट जीपीटी को अगर इंसान बना दिया जाए ना, तो वो हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानते होंगे। मतलब आप जो है, आप हमारे सवाल तो देखिए कि हाउ टू स्लीप फास्ट, वाई एम आई लाइक दिस, नियर बाई चाय ओपन नाउ, चीफ फ्लाइट्स टू दिल्ली या लाहौर, या फिर ये US का वेदर इतना चेंज क्यों होता रहता है 5 मिनट्स में। सो आई वॉन्ट यू टू कॉल मी एंड टेल मी कि आपकी रीसेंट जो है गूगल या चैट GPT सर्च हिस्ट्री क्या रही है, एट 972-235-55 पे, एंड कीप एंजॉइंग द गुड म्यूजिक ऑन फनेशर रेडियो।

हो सकता है कि आप नहीं जानते हो, लेकिन आपका गूगल या चैट जीपीटी की सर्च हिस्ट्री आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। हाँ, मतलब आज का लेसन तो काफी सिंपल रहा कि आपके बेस्ट फ्रेंड शायद सब कुछ ना जाने पर गूगल डेफिनेटली सब कुछ जानता है। और अगर आपको कभी लाइफ में लोनली फील हो रहा हो तो बस अपनी सर्च हिस्ट्री देख लो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि लाइफ कितनी रैंडम चल रही है। और ये जो सर्च हिस्ट्रीज है ना गूगल या चैट जीपीटी की, इनमें और हमारी मम्माज में एक सिमिलैरिटी तो होती है कि दोनों के पास ही हर चीज का जवाब हो सकता है। आप उनसे कुछ भी पूछ लीजिए, सब पता है उनको।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: बहुत ही प्यारा सा ट्रैक था दोस्तों, फ्रॉम द मूवी फना। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स के बारे में। मतलब अगर आप देख रहे हैं ऐसा कुछ ऑप्शन जो कि आपके स्पेशल मोमेंट्स को थोड़ा और स्पेशल बना दे, उसमें थोड़ा और स्पार्कल ला दे, तो आप यू नो यू शुड हेड टुवर्ड्स मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स, विच इज सिचुएटेड एट प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को। एंड दिस इज योर डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी दैट्स एलिगेंट, टाइमलेस। और ये ना जी क्राफ्ट किया गया एकदम शाइन करने को, चमकने से, और आपके मोमेंट्स को और स्पेशल बनाने के लिए। फ्रॉम ब्यूटिफुल रिंग्स एंड ईयर रिंग्स टू डैजलिंग नेकलेसेस एंड कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स, यहाँ आप पा सकते हैं अपना परफेक्ट पीस फॉर एंगेजमेंट्स, एनिवर्सरीज, सेलिब्रेशंस, या फिर अगर आप एवी खुद को ही अगर ट्रीट देना चाह रहे हैं, सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, तो भी आप डायमंड्स जो है ले सकते हैं फ्रॉम मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स। और यहाँ आप एक्सपीरियंस करेंगे अनमैच्ड क्राफ्टमैनशिप। और ये जो मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स है वो सिचुएटेड है फ्रिस्को में। और अगर आपको लेटेस्ट कलेक्शंस, उनके अपडेट्स, डिजाइंस या कोई और डिटेल्स देखने हैं, तो आप उनका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या पसंद आ रहा है जी।

दोस्तों, हमने इस गाने के पहले आपसे एक गिव अवे का क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक प्लेन क्रैश करता है एट द बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड कनाडा तो सर्वाइवर्स को कहाँ बरी करेंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा. लाइक ऑलमोस्ट आई गॉट अराउंड 10 to 12 आंसर्स और आई एम वेरी वेरी इंप्रेस. गाइस, आप लोग बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि सब ने सही जवाब दिया है कि सर्वाइवर्स को बरी नहीं करते. सब वो तो सर्वाइवर्स है ना, उनको क्यों बरी करेंगे भाई. एंड यू नो, मेरे सारे क्वेश्चंस में आजकल लोग बहुत ज्यादा चैट जीपीटी वगैरह कर रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा फन और ट्रिकी क्वेश्चन पूछती हूँ ताकि लोग थोड़ा कंफ्यूज हो और जो ध्यान से सुन रहा हो वो जवाब दे. तो इस राउंड के विनर हैं निरंजन गाडेकर जी. कॉन्ग्रेचुलेशंस निरंजन जी, आपको मिला है नियॉन कैक्टस में $20 का डिस्काउंट ऑन डाइन इन. और ये ना बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट है, अगर आप मेक्सिकन फूड पसंद करते हैं तो आप नियॉन कैक्टस जाइए. यहाँ पे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जबीहा हलाल ऑप्शंस हैं और भी बहुत सारे वेजिटेरियन चॉइसेस हैं, ऑल पैक्ड विद बोल्ड फ्लेवर्स. और वाइब की तो पूछे मत, मतलब वाइब एकदम यंग है, कलरफुल है, मॉडर्न है, फुल ऑफ एनर्जी है. जाके आप हैंग आउट्स के लिए जा सकते हैं, डेट नाइट्स के लिए जा सकते हैं, या फिर अगर आपको जस्ट चिल करना है तो. और अगर आपको कॉकटेल्स या फिर मॉकटेल्स बहुत पसंद है तो इनका हैप्पी आवर्स भी आप इंजॉय कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे. एंड स्पेशल डील्स होते हैं हर एक दिन, तो बिल्कुल आप जाइए नियॉन कैक्टस. और निरंजन जी, आपको तो जाना ही चाहिए. आई मीन कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड थैंक्स टू एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड. कीप एंजॉयिंग फनेशा रेडियो.

ऑल राइट डैलस लिसन अप और स्टोर ओनर्स, ये खास आपके लिए है। वी हैव गॉट अ ताजा ताजा न्यूज फ्रॉम रवि इम्पोर्ट्स वेयरहाउस। जी हाँ, रवि का समर किक ऑफ इज बैक। सो मार्क योर कैलेंडर्स फॉर जून 3rd and 4th। टाइमिंग्स है 9 AM to 5 PM। और इस साल है ना, ये और भी बड़ा और बेहतर होने वाला है, क्योंकि जो पूरा वेयरहाउस है रवि का, वो टर्न होने वाला है एक ट्रॉपिकल एक्सपीरियंस में, जहां आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रेजी डील्स, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस और फ्री गिफ्ट्स ऑल द डे लॉन्ग। आप वेंडर से मिल सकते हैं, वहां के बेस्ट सेलर्स डिस्कवर कर सकते हैं और स्टॉक अप कर सकते हैं फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर फॉर सेलिंग, यू नो। सो अगर आपको रवि इम्पोर्ट वेयरहाउस का एड्रेस नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं, इट्स 11029 हैरी हाइंस बुलेवर्ड, बिल्डिंग ए, डैलस। ओके, so I hope you're marking your calendars. Until then, keep enjoying Furniture Radio 104.9 FM, जहां all the day long बजते रहते हैं अच्छे गाने।

दोस्तों वक्त हो गया है हमारे एक और गिव अवे राउंड का। हाँ जी, जिन्होंने भी लास्ट टाइम मिस कर दिया हो, थोड़ा लेट कर दिया हो जवाब देने में, इस बार वो एकदम तैयार हो जाए क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग गिव अवे आने वाला है फ्रॉम फन पिज्जा किचन। आपको जीतने पे मिल सकता है $10 का गिफ्ट कार्ड बाय आंसरिंग अ सिंपल क्वेश्चन। तो मैं एक सवाल करने वाली हूँ आपसे, एक मूवी का सीन देने वाली हूँ और आपको डिसाइड करना है, बताना है मुझे कि ये कौन सी मूवी है। ठीक है, रेडी, ऑल सेट, गो। एक किंग साइज फैमिली है, शादी है, इमोशनल सॉन्ग्स हैं और एक फेमस डायलॉग है, कह दिया ना बस, सॉरी कह दिया ना बस कह दिया। याद आ रहा है कुछ? फिर से बता दूं, एक किंग साइज फैमिली है, शादी है, इमोशनल सॉन्ग्स हैं और एक फेमस डायलॉग है, कह दिया ना बस कह दिया। तो आपको बताना है कि ये कौन सी मूवी है और एक और चीज बताना है कि किसने किसने बोला था ये डायलॉग।

दोस्तों थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड इन द लास्ट गिव अवे राउंड. हमने आपसे पूछा था एक मूवी सीन के बारे में जो कि है एक किंग साइज फैमिली, बहुत सारे शादी के सीन्स हैं, इमोशनल सॉन्ग्स हैं और एक फेमस डायलॉग है, कह दिया ना बस कह दिया. और बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है और इसका जो सही जवाब है वो है कभी खुशी कभी गम. और ये जो डायलॉग है वो बोला है अमिताभ बच्चन जी ने. और मुझे तो बहुत सारे लिसनर्स ने ये भी बताया कि लास्ट में जया बच्चन भी बोलती हैं एकदम स्टाइल मार के कि यू नो इट्स माय टर्न नाउ, यू हैव टू लिसन टू मी. सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि द डिटेलिंग दैट ऑल ऑफ यू लिसनर्स गेव टू मी. और इस राउंड के विनर हैं अंशुल भार्गव. कॉन्ग्रेचुलेशंस अंशुल, आपको मिलता है $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. और फन पिज्जा किचन वो जगह है जहां पे फ्लेवर मिलता है फायर से. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अचारी पनीर पिज्जा, जहां पे ना मतलब जो पिज्जा है उसका वो मिक्स्ड है टैंगी अचार पंच के साथ और जो सॉफ्ट सॉफ्ट पनीर मेल्ट करता है एकदम स्पाइसी मैजिक में, तब तो मजा ही आ जाता है. लेकिन अगर आपको मीट पसंद है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, तो तंदूरी चिकन पिज्जा इज प्योर स्मोकी परफेक्शन फॉर यू स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर टू योर टेस्ट बर्ड्स. सो अगर आपको बोल्ड पसंद है, ब्यूटिफुली बैलेंस पसंद है, जो भी आपको मर्जी चाहिए वो यहाँ पे मिल रहा है इनके पिज्जा में और हर एक स्लाइस ना आपका इंतजार कर रहा है एट फन पिज्जा किचन. अगर आपको इस पे और डिटेल जानना है इनके मेन्यू वगैरह के बारे में तो आप विजिट कर सकते हैं फन पिज्जा kitchen.com. And Anshul ji, congratulations, you are the lucky winner.

0: दोस्तों अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम मिलेंगे एक गेस्ट से और होंगी ढेर सारी बातें। अभी तो बहुत कुछ बचा है एंड आई वुड लाइक टू मेंशन सोहेल एंड मरियम जी। एक्चुअली लास्ट राउंड में दे वेर द फर्स्ट कॉलर्स बट उन्होंने कहा कि उनको नहीं चाहिए जी ऐसा कुछ गिव अवे वगैरह। दे वेर जस्ट प्लेइंग फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग। सो आई रियली अप्रिशिएट इट एंड थैंक यू सो मच। एंड अंशुल यू शुड बी थैंकफुल टू सोहेल एंड मरियम।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping, aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
8: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
7: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
9: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
2: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338, The SBA Loan Experts, फैसला क्लैरिटी के साथ।
10: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: क्रेविंग डिलीशियस इंडो चाइनीज एंड नॉर्थ इंडियन फूड, रेड हॉट चिली पेपर इज द प्लेस टू गो। विद लोकेशंस इन फ्रिस्को, मकीनी, रिचर्डसन एंड नाउ आवर न्यूएस्ट लोकेशन इन एलन एट वाटर्स एंड 121। वेदर यू आर डाइनिंग इन, टेकिंग आउट और केटरिंग, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
2: यार, बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
13: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
2: सच में, एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
13: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
2: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे।
13: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
2: नंबर बोल जल्दी।
13: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
14: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
15: हे डैलस, स्टिल परफॉर्मिंग ओनली फॉर योर बाथरूम मिरर और द फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

दोस्तों, दिस इज आरजे सिमी और शो का नाम है आफ्टरनून अड्डा। और स्टूडियो में अभी वक्त हो गया है 2:10। मेरे पास है अनदर 20 मिनट्स विथ यू। और अभी हम करेंगे ढेर सारी बातें, मतलब 20 मिनट्स तो काफी होता है यार, अभी मैं नहीं जा रही। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ रिगार्डिंग माई टाइम इक्विटी विच इज लेड बाई CPA सुधीर पाई, जो कि हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को या फिर उनकी फैमिलीज को स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने में थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल स्टेट अपॉर्चुनिटीज या फिर कोई भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान्स। अगर आप प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ, रिटायरमेंट या आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो है बूस्ट करना चाह रहे हैं, इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, देन आई थिंक माई टाइम इक्विटी इज डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन फॉर यू टू कंसिडर, बिकॉज दे ऑफर पर्सनलाइज सोल्यूशन डिजाइंड अराउंड योर गोल्स। विजिट mytimeequity.com या फिर कॉल कीजिए 4697021272 पे। Okay, I'll repeat the number for you, 4697021272, and keep enjoying the good music at Funasia Radio.

0: दोस्तों आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में होम मॉर्टगेज एक्सपर्ट फ्रॉम माय फैमिली होम लोन डॉट कॉम मिस शिफाली पंजवानी। शिफाली जी हेलो।
1: हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग?
0: आई थिंक द लिसनर्स आर डूइंग गुड और वो मौसम का मस्त जो है एंजॉय कर रहे हैं, बारिश वगैरह हो रही है बाहर। आपसे कुछ सवाल थे शेफाली जी, अगर बिजनेस ओनर्स या फ्रीलांसर्स या फिर 1099 अर्नर्स जो हैं उनके लिए होम लोन लेना थोड़ा डिफिकल्ट और डिफरेंट होता है, तो आप बताइए कि ऐसा क्यों होता है एंड हाउ कैन दे ओवरकम इट?
1: श्योर, ग्रेट क्वेश्चन। उनके लिए डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि उनका इनकम फ्लक्चुएट करता है और W2 जब होता है तो उसमें इनकम फिक्स्ड रहता है, जबकि 1099 में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। सो ट्रेडिशनल लोन्स हम जब लेने जाते हैं तो वो स्टेबल इनकम प्रेफर करते हैं, और उनका इनकम डॉक्यूमेंटेशन का जो इवैल्यूएशन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है 1099 से। सो इस तरीके से वो डिफरेंट होता है। और 1099 बोरोवर्स के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए सेवरल अदर प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, और उसमें से कुछ है जो बैंक स्टेटमेंट प्रोग्राम होते हैं जिसमें अल्टरनेटिव इनकम डॉक्यूमेंटेशन को कंसिडर किया जाता है एज पर लेंडर गाइडलाइंस एंड अप्रूवल, और दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे एज पर ITIN प्रोग्राम्स होते हैं, फॉरेन नेशनल के लिए प्रोग्राम होते हैं इफ दे वांट टू बाय परचेज द होम। सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल सिनेरियो के उनका पर्सनल कैसा प्रोफाइल है और वो कहाँ स्टैंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन दैट वी गो फ्रॉम देयर एंड चूज द लोन प्रोग्राम्स व्हिच इज सुटेबल फॉर देम।
0: थैंक यू सो मच शेफाली जी, दैट वॉज रियली हेल्पफुल। एक और सवाल था आपसे कि अगर कोई घर खरीदने का सोच रहा है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, और पूरा अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमारे लिसनर्स को बता पाए तो अच्छा रहेगा।
1: सो घर खरीदना है, जो भी देख रहे हैं लाइक राइट नाउ और डाउन द रोड, दे हैव टू गेट योर प्रोफाइल रेडी। उनको उनका प्रोफाइल रेडी करना जरूरी है। उनके लिए सबसे पहले अपने जो फाइनेंशियल्स हैं उनको रिव्यू कराए, आपका क्रेडिट, आपका इनकम और आपका डॉक्यूमेंट्स देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आप अपना होम बाइंग प्रोसेस कैसे स्मूथ कर सकते हैं। इवन बिफोर बाइंग द होम, अगर आप रियल्टर के पास में भी जाते हो, दे से डू यू हैव अ प्री क्वालिफिकेशन लेटर, विदाउट दैट दे थिंक दैट यू आर नॉट सीरियस बायर, यू आर जस्ट डूइंग अ विंडो शॉपिंग, लाइक जस्ट लुकिंग अराउंड, नॉट रेडी टू बाय। सो ये स्टेप्स होते हैं जो आप अगर मॉर्गेज प्रोफेशनल के साथ वन ऑन वन कंसल्टेशन लेके डिस्कस करते हैं एज पर योर सिनेरियो, देन यू नो वेर यू स्टैंड, इवन इफ यू आर रेडी टू बाय राइट नाउ और डाउन द रोड इन अ ईयर और टू ईयर, बट एटलीस्ट यू नो दैट विच राउट यू नीड टू टेक। सिमिलर दिस इज फॉर द होम ओनर्स, ऑल्सो फॉर द इन्वेस्टर्स इफ दे आर लुकिंग टू एक्सपांड देयर रेंटल पोर्टफोलियो, फॉर देम ऑल्सो ईच सिनेरियो इज डिफरेंट। सो आप अगर मॉर्गेज प्रोफेशनल के साथ वन ऑन वन बैठ के अपना सिनेरियो डिस्कस करके यू फाइंड आउट दैट वेर यू स्टैंड एंड विच लोन प्रोग्राम्स आर अवेलेबल फॉर यू विच कैन हेल्प यू एंड हेल्प यू सेव एंड ऑल्सो विच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एंड रिसेंटली वी हैव अ $2,000 बेस्ट प्राइस गारंटी फॉर परचेज एंड रीफाइनेंस। वी बीट एनी ऑफर्स, if we cannot match it we will beat that offer and we will pay you $2,000 if we cannot match those rates. So please give us a call and discuss your scenario for any residential mortgage needs, refinance, or even if we are looking into the rental market. Please give us a call at 469-734-3338. Thank you.
0: थैंक यू सो मच शेफाली जी, इट वॉज रियली हेल्पफुल, विल कनेक्ट विथ यू अगेन। और हम अपने अच्छे गानों का सिलसिला जारी रखते हुए बजा रहे हैं पहला नशा।

दोस्तों आज के शो का वक्त यहीं खत्म होता है. ये था आफ्टरनून अड्डा ब्रॉट टू यू बाय उमर ख्वाजा विथ हिज ट्रैफिक अपडेट्स अराउंड DFW एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट्स. अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर किसी भी स्लिप या फॉल इंसिडेंट में, तो अटॉर्नी उमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के साथ है ना डील करना बड़ा ही स्ट्रेसफुल हो जाता है कई दफा. और आप ये जो अटर्नी हैं उमर ख्वाजा, वो मेक श्योर करेंगे कि आप जो है तब तक पे ना करें जब तक कि आप केस जीत नहीं जाते. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्री कंसल्टेशन विद अटर्नी उमर ख्वाजा, प्लीज कॉल हिम एट 4693005046 और विजिट attorneyomar.com. ओके दोस्तों, और जैसा कि मैंने बताया कि वक्त अब बहुत मतलब हो ही चुका है, बस अब समझिए. मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे सिमी, अब लेती हूँ आपसे इजाज़त. स्माइल करते रहिए, खुश रहिए, और याद रखिए कि लाइफ की प्लेलिस्ट में पॉजिटिव वाइब्स हमेशा ही ऑन रहनी चाहिए. कल फिर मिलेंगे एक नए शो, नए म्यूजिक और नए मस्ती के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, गुड इवनिंग, गुड नाइट, शुभ रात्रि, एंड कीप लिसनिंग टू Fun Asia Radio.

0: के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM टू 8 PM वॉक इन एनी टाइम 9191 काइजर वे स्वीट 205 फ्रिस्को।
1: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
2: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
1: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
2: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट आउटडेटेड या अनवेरिफायबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। जीनो क्रेडिट रिपेयर, फिक्स योर स्कोर, फिक्स योर लाइफ। जीनो क्रेडिट रिपेयर डज नॉट गारंटी रिजल्ट्स। यू हैव द राइट टू डिस्प्यूट इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन योर क्रेडिट रिपोर्ट योरसेल्फ फ्री ऑफ चार्ज। सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद अ 3-डे राइट टू कैंसिल।
3: घर की याद नहीं आई तुझे जैसी?
4: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
1: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
4: सच में बिल्कुल घर जैसा।
1: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुलचास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
5: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
6: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
5: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
6: वेट, व्हाट?
0: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
7: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
0: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
8: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
9: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
8: कैसे?
9: पेज 3 ईटरी?
8: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
9: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
8: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
10: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
0: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com. Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

0: बाय डालस।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूप।

A very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. This is your afternoon drive time with सुनहरी किरण. Thank you so much जी आज की दोपहर हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए. 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर. और मैं आपके साथ मौजूद रहती हूं मंडे टू फ्राइडे 2:30 PM टू 5 PM. आज का सफर हमारा लंबा होने वाला है. आज मैं आपके साथ 6:30 बजे तक मौजूद रहूंगी, लेकिन वो बात बाद में. फिलहाल जो हम 2:30 बजे से 5 बजे तक ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में आपके लिए एक्सक्लूसिव्स लेके आती हूँ हर रोज एक नया फ्लेवर. और आज का फ्लेवर है, आज है जी टेरिफिक ट्यूसडे, और आज का फ्लेवर है बॉलीवुड स्पॉटलाइट. स्पॉटलाइट डालते हैं हमें ऐसे स्टार पे जिसने अपने काम से हमें यानी के एज ऑडियंस बॉलीवुड में कुछ खूबसूरत और कमाल के गाने दिए. पिछले हफ्ते हमने स्पॉटलाइट डाली थी अरिजीत सिंह पे, एंड वन एपिसोड वाज नॉट इनफ टू डू जस्टिस टू अरिजीत सिंह. सो आज हम दोबारा से हाजिर हुए हैं अरिजीत सिंह एपिसोड 2 बॉलीवुड स्पॉटलाइट राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण.

अरिजीत सिंह पे हमने डाली है स्पॉटलाइट और उन्हीं के गाए हुए कुछ खूबसूरत गाने आपके लिए आज पूरी एपिसोड यानी ये 4:30 बजे तक प्ले करूंगी सब ब्यूटीफुल मेलोडीज ऑफ अरिजीत सिंह। ये जो गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह ने इसे गाया, लेकिन आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो मैं रिपीट करती चलूँ या बताती चलूँ कि ये दिस वॉज आज जाने की जिद ना करो जो कि लिखा था फयाज हाशमी साहब ने और इसको कंपोज किया था सुहेल राणा ने। इनिशियली इस गाने को पाकिस्तानी सिंगर्स ने गाया और फिर अरिजीत ने इसका और फिर कई सारी रेंडिशंस और भी आईं और लेटली इसका ये जो रेंडिशन आपने सुना अरिजीत की आवाज में ये बनाया गया था। एक शो आया था जिसका नाम था नामकरण और इस शो में मेरे ख्याल बरखा थी और ये शायद स्टार पे आया था और उसके लिए अरिजीत सिंह ने इस गाने को रिक्रिएट किया था। बहुत बड़ा बजट था उस शो का और अरिजीत को हायर किया गया था जी इस गाने के लिए। और फिर उसके बाद ए दिल है मुश्किल में भी इस गाने की रेंडिशन यानी कि आज जाने की जिद ना करो को इस्तेमाल किया गया। सो एक छोटी सी बात, इस आज जाने की जिद ना करो द मशहूर ज़माना, ज़मानों से ज़माना, मतलब आप कह लीजिए 60s 70s के दौर से ये गज़ल चलती आ रही है और आज तक उतनी ही खूबसूरत है। वी आर टॉकिंग अबाउट अरिजीत सिंह टुडे। दिस इज़ योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8683464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
3: Astrology readings have guidance only and results may vary.
4: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
5: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
4: K2 ड्राइव मतलब
5: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
4: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
5: 100%
6: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402। K2 ड्राइव, डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर।
7: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
8: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
7: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
8: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपर हिट।
9: I've been researching retirement planning.
10: Oh, really? Where?
9: Google, YouTube, a guy on TikTok.
10: Or you could just talk to Wealth Active.
9: What's the difference?
10: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
11: Wealth Tactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
12: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
11: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
13: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
14: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
15: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
14: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
15: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
14: ये क्या होता है?
15: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
16: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
17: मामू, देखो क्या हो गया।
18: ओ, क्या हो गया?
17: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
18: ओए, जर्मन का कमाल है।
17: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
18: ओ, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं, और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा यार।
19: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस। Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park Plano near downtown for the Ambuj Basant Mela powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a Pan India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DAW.
20: For booth and sponsorship contact, admin@ambuj.us.
21: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM.

जी हाँ, कर रहे हैं अरिजीत को सेलिब्रेट बॉलीवुड स्पॉटलाइट में। स्पॉटलाइट डाली है हमने अरिजीत सिंह पे। दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण, और आपके लिए 4:30 बजे तक लेकर आऊंगी बॉलीवुड स्पॉटलाइट। वैसे आज मेरा और आपका साथ 5 बजे के बजाय 6:30 बजे तक रहेगा। आपकी पसंद के और अपनी पसंद के गाने, वी आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट राइट हेयर। चैनल बिल्कुल मत चेंज कीजिए, 104.9 FM इज वेयर यू आर ट्यून्ड इन, एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर यू should stay tuned in. Thank you so much for connecting with me this afternoon. Kuch khubsurat gaane as picturized on Arijit Singh. Arijit Singh ki hi baat ho rahi hai, aur aapko batate chalein ji ke playback singing, Bollywood playback singing mein na sirf ye ke Arijit ne Hindi languages mein gaane gaaye, balki kamal ke gaane ek se badhkar ek kaun-kaun si languages mein, Bengali, Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada, Marathi, Gujarati, Assami, Punjabi, as well as of course Hindi, aur इंग्लिश के कुछ इंटरनेशनल स्टार्स के साथ भी उन्होंने कोलैबोरेट किया। हिज स्टारडम इज गोइंग प्लेसेस एंड वी आर एंजॉयिंग एवरी सिंगल बिट ऑफ इट।

अगर आप अपने ख्वाबों के घर की तलाश में हैं एंड यू लुकिंग टू गेट मॉर्गेज फॉर दैट, देन ड्रीम होम मॉर्गेज से ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए. 1998 से ड्रीम होम मॉर्गेज फैमिलीज को हेल्प कर रहे हैं टू अचीव देयर होम ओनरशिप ड्रीम, और उस ख्वाब को रियलिटी बनाते हैं. दे प्रिपेयर पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस फॉर यू. द प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्मूथ एज वेल एज स्ट्रेस फ्री. ड्रीम होम मॉर्गेज इज लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स. उनकी एक्सपीरियंस टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शन टेलर्ड फॉर योर नीड्स. जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनको बताइए एंड दे विल मेक अ टेलर मेड सोल्यूशन फॉर यू. चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हों, चाहे आप अपग्रेड करना चाहते हों, चाहे आप रीफाइनेंस करना चाहते हों, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ड्रीम होम मॉर्गेज इज हेयर एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद कॉन्फिडेंस विद देम टूडे. देयर नंबर इज, गिव देम अ कॉल. अगर आप ये सुनकर कोई सवाल आपके जहन में आया है तो 972-245-5626 इज द नंबर. 972-245-5626 और विजिट देयर website which is dreamhomemortgage.com ya phir aap unhe email bhi drop kar sakte hain at info@dreamhomemortgage.com. this is your Bollywood spotlight on afternoon drive time with Sunehri Kiran.

आज ये टाइम गुजर रहा है जी, बहुत ही खूबसूरत कुछ बैक टू बैक सुपर डुपर हिट गाने लगा रही हूँ आपके लिए अरिजीत सिंह के। बॉलीवुड स्पॉटलाइट में हमने स्पॉटलाइट डाली है अरिजीत सिंह पे। मैं हूँ किरण, आपके साथ मौजूद हूँ ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण। और अरिजीत सिंह के अवार्ड्स के बारे में क्या बात की जाए, आपको बताती हूँ कि अब तक जो उनका करियर रहा है उसमें 395 टाइम्स अरिजीत सिंह को मिली हैं नॉमिनेशंस, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड सेरेमनीज जैसे कि बिग स्टार एंटरटेनमेंट, फिल्म फेयर अवार्ड्स, फिल्म फेयर बांग्ला, फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ, FOI ऑनलाइन अवार्ड्स, गाना यूजर चॉइस अवार्ड, IFA अवार्ड्स, INC अवार्ड, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है द नंबर ऑफ अवार्ड्स। लेकिन उन तमाम अवार्ड्स में 395 टाइम्स ही हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क, एंड आउट ऑफ दोज 395 टाइम्स ही हैज वन 124 times. That is how much loaded Arijit Singh is, and we are celebrating him today.

0: ओकेजन को सूट करे.
1: That kind of jewelry.
0: Yeah, carat lane kind.
2: Lightweight, real diamonds. Your everyday fine jewelry. Made to be worn, not stored. Carat lane, a Tata product. Now open in Frisco. Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी. डायग्नोसिस क्लियर है. आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी. फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन. कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज.
3: सब कुछ साफ रख सकते हो
4: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती. कोई नहीं सोचता मेरे बारे में.
5: क्योंकि ये कौन बोला?
4: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जन जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं. और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे. हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है. मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
0: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है. कॉल जीतू पटेल 9728772500.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: बेटा, इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
11: मम्मा, कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है.
10: रोज का सेम प्रॉब्लम.
12: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे. लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं. लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मैकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है.
13: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13. कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग.
14: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को.
0: कॉल 9726661181 और मेंशन करें फाइनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ. Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
15: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
0: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
16: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
0: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
17: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
18: इन प्लेनो.
17: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
15: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
19: गुडनेस इज अ ब्यूटीफुल थिंग. And good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.
20: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Phoenicia Radio.

0: Spotlight लेकर हाजिर हुई हूँ एंड इट इज टाइम नाउ टू कनेक्ट यू विद द कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण ब्रॉट टू यू बाय द फ्लेवर लाउंज. चैन से आपके पास जीतने का दाल मखनी या फिर धाबा स्टाइल चिकन करी. दिस इज अ डाइन एंड ओनली ऑफर एंड दे आर लोकेटेड द फ्लेवर लाउंज इज लोकेटेड इन प्रेस्टन ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को. तो जी डाइन इन के लिए अगर आप ये दाल मखनी या धाबा स्टाइल चिकन करी जीतना चाहते हैं तो जरूर कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण में कनेक्ट कीजिए. अगर आप पिछले महीने में ये जीत चुके हैं तो यू कैन ओनली बी अ विनर वंस. सो इस बात का ध्यान रखिएगा. अच्छा जी, बात हो रही है अरिजीत सिंह की. अरिजीत सिंह के कुछ गाने, ना सिर्फ ये कि अरिजीत ने हमें कुछ खूबसूरत हैप्पी सॉन्ग्स दिए, रोमांटिक सॉन्ग्स दिए, कुछ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट डांसिंग नंबर्स दिए और कुछ बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग्स दिए. ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. जैसे कहते हैं ना, हर तरह का जॉनर जो है वो अरिजीत सिंह गाते हैं और कमाल का गाते हैं. तो इस वक्त आपके जहन में अरिजीत का कौन सा गाना आ रहा है? 9722355555 पे कॉल कीजिए और कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण ब्रॉट टू यू बाय द फ्लेवर लाउंज में मुझे बताइए कि इस वक्त आपके जहन में अरिजीत सिंह का कौन सा गाना है, क्यों पसंद आ रहा है या इस वक्त क्यों आ रहा है आपके जहन में वो गाना. और चाहे तो आप एक लाइन गुनगुना सकते हैं, लेकिन एक ही लाइन, वक्त की बहुत कमी है. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. अपना नाम बताइए.
1: मेरा नाम संतोष शर्मा.
0: जी संतोष, बताइए विच सॉन्ग आर यू थिंकिंग राइट नाउ? तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना. बिल्कुल सही संतोष, थैंक यू सो मच. आपको ये गाना क्यों ख्याल आ रहा है इस वक्त? जी, बिल्कुल सही. ऑल राइट, थैंक यू संतोष, सुनते रहिए. मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ राइट आफ्टर दिस कॉन्टेस्ट. तो जी ये है कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण. आपकी लाइव कॉल्स ले रही हूँ. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव इन एयर. अपना नाम बताइए.
2: किरण.
0: आपका नाम किरण है?
2: किरण.
0: ऑल राइट, किरण किरण से बात कर रहे हैं?
2: नहीं, हिरल, HIRAL.
0: ओके, थैंक यू हिरल फॉर स्पेलिंग दैट आउट फॉर मी. मुझे ऐसा लग रहा था कोई किरण ही बोल रही है. तो बताइए हिरल, कौन सा गाना आप इस वक्त गुनगुनाना चाहेंगी अरिजीत का?
2: रॉकी और रानी मूल से, वो है ना, बेरंग से.
0: ओ अच्छा, ये मैंने अभी प्ले किया है 10 मिनट पहले. वाओ जबरदस्त. जी जी जी, डू यू वांट टू सिंग अ लाइन? आई
2: मीन
0: हां, डू यू वांट टू सिंग अ लाइन?
2: Oh no, that's fine. But okay. I was just, since you mentioned ki kaun sa gana Arijit Singh ka yaad aa raha hai, so this is, I specifically because of weather, I know the rain nahi ho raha tha, par achha lag raha hai, wo gana hi le deta.
0: Ji ji, Arijit Singh has given us some such beautiful romantic melodies. Har tarah ka gana wo gaate hai aur you know, aisa lagta hai ki bas yahi inka khasa hai. All right, Hiral, thank you for connecting. Sunte rahiye, I'm going to announce the winner in a bit. Fanasia Radio, you're live in air. What is your name?
3: I'm RB and the song is Wo Rang Bhi Rang Hai, Milta Na Jo Teri Samli Zulf Ke Rang Se. Zero ka gana.
0: Ji, bilkul sahi. Thank you so much, RB, for connecting and telling us the song. Please keep listening. I'll announce the winner in a bit. All right, ji, aapki pasand ke sare gaane main note down kar rahi hoon. Ek ek karke ko time milega to play bhi karenge. Fanasia Radio, you're live in air. What is your name?
4: Kakuli.
0: Kakuli?
4: Yes.
0: जी काकुली, बताइए विच सॉन्ग आर यू थिंकिंग अबाउट?
4: आई एम थिंकिंग अबाउट दुआ. इट्स अ मूवी सॉन्ग, आई थिंक शंघाई बाय अरिजीत सिंह. आई वाज होपिंग फॉर रेन एंड इट केम एंड आई एम ड्राइविंग राइट नाउ एंड लुकिंग एट द स्काई एंड दिस इज जस्ट परफेक्ट सॉन्ग फॉर मी राइट नाउ.
0: ओके, लवली.
4: यू प्लेड द सॉन्ग टू द स्काई एंड It went to the sky, it came back down, you know, something like that. So this is the first song came in my mind.
0: That is great. Thank you so much, aapki call ka, and discussing the song with us. Keep listening, I'll announce the winner in a bit. Fanisha Radio, you are live in air. What is your name?
5: Akansha.
0: Hi, Akansha. Bataiye, what song are you thinking about?
5: The all-time favorite, Tum Hi Ho from Aashiqui 2.
0: All right, lovely. From Aashiqui 2, Tum Hi Ho. Bilkul sahi. Do you want to sing a line? All right, that's great. All right, thank you, Akansha. सुनते रहिए. ओके, अब मैं एक गाना लगाने लगी हूँ. कॉन्वर्सेशन कॉर्नर हमारा जारी रहेगा. एक गाने का हमें गैप दीजिए और उसके बाद वापस आकर करेंगे मजीद बातें. फोन कॉल्स होल्ड करके रखिएगा. राइट आफ्टर दिस सॉन्ग वी विल कनेक्ट अगेन.

0: Nature Radio. You are live on air. We are still in Conversation Corner with Sunehri Kiran, brought to you by Flavor Lounge. अपना नाम बताइए.
1: जी, मैं नूर फातिमा बोल रही हूँ.
0: जी फातिमा,
1: मैं फिर भी तुमको चाहूंगा.
0: बिल्कुल सही. मैं फिर भी तुमको चाहूंगा फ्रॉम द मूवी, क्या नाम था मूवी का, आशिकी टू का गाना.
1: जी जी जी,
0: थैंक यू सो मच फातिमा हमारे साथ कनेक्ट करने
1: के लिए.
0: जी जी बिल्कुल, सुनाइए. ऑफ कोर्स
1: मैं फिर भी तुमको चाहूंगा,
0: इस चाहत में मर जाऊंगा. बिल्कुल सही, थैंक यू. सुनते रहिए. मैं अभी
1: मेरा नाम कहा था, थोड़ा सा सुनाना.
0: जी जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया. सुनते रहिए. और जी, एक करेक्शन यहाँ पे छोटी सी मैं करना चाहती हूँ. वो रंग भी जो गाना है मेरे नाम तू, ये गाना अरिजीत सिंह ने नहीं गाया. हमारे अभी एक कॉलर ने हमें बताया कि उनको जहन में इस वक्त ये गाना आ रहा है. सवाल हमारा अरिजीत सिंह के बारे में हो रहा था. और दिस सॉन्ग इज संग बाय अभय जोधपुरकर, और ये जो गाना है ये टेकन फ्रॉम द मूवी ऑफ कोर्स जीरो से लिया गया है. तो ये मैं करेक्ट करना चाहती थी ताकि सबको ये याद रहे कि ये अरिजीत का नहीं जी, अभय जोधपुरकर का गाया हुआ गाना है. फानीशिया रेडियो, यू आर लाइव इन एयर. व्हाट इज योर नेम?
2: योगेश्वरी.
0: योगेश्वरी, ऑल राइट. योगेश्वरी, अपना बताइए कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है?
2: देश मेरे.
0: दे, ओ, देश मेरे फ्रॉम राजी, राइट?
2: यस मैम.
0: ओके, यू वांट टू सिंग इट?
2: ओ देश मेरे.
0: लवली योगेश्वरी, आपने बहुत
2: आता है इंडिया की, जब ये टेक्सास में रहते हैं, डेलस में रहते हैं, तब कल को इंडिया की याद आती है. बिल्कुल इंडिया जैसा वेदर एंड एवरीथिंग.
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत खूबसूरत गाना याद दिलाया. थैंक यू योगेश्वरी. सुनते रहिए, मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ राइट आफ्टर दिस. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव इन एयर. व्हाट इज योर नेम?
3: हाय, माय नेम इज श्रीशा.
0: श्रीशा जी, श्रीशा बताइए.
3: द सॉन्ग आई एम गेटिंग राइट नाउ इज अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो.
0: बिल्कुल सही, दीपिका पादुकोण एंड रणबीर कपूर पे पिक्चराइज दिस खूबसूरत सॉन्ग. थैंक यू सो मच श्रीशा. सुनते रहिए, मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव इन एयर. व्हाट इज योर नेम? फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव इन एयर. व्हाट इज योर नेम?
4: हाय, माय नेम इज फयाज.
0: दोबारा बताइए सर अपना नाम.
4: जी फयाज मोहम्मद.
0: फयाज जी, फयाज साहब बताइए अरिजीत का कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है?
4: हमारी अधूरी कहानी का टाइटल सॉन्ग.
0: पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई.
4: जी जी जी.
0: यू वांट अ सिंगल लाइन?
4: श्योर, या
0: बताइए.
4: पास आए दूरियां फिर भी कम हुई.
0: क्या बात है. बिल्कुल सही जी, एक लाइन होगी कदम. और बहुत खूबसूरत आपने गाना याद दिलाया फयाज. सुनते रहिए. और जी, लास्ट कॉलर ऑफ द डे, फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
5: नमिता.
0: ओके नमिता, बताइए व्हाट सॉन्ग आर यू थिंकिंग अबाउट? ओके लवली, डू यू वांट अ सिंगल लाइन फॉर अस?
5: मरीज़े इश्क हूँ मैं, कर दे दवा, हाथ रख दे.
0: जबरदस्त, सुनते रहिए, मैं भी विनर अनाउंस करती हूँ राइट आफ्टर दिस. ऑलराइट जी, दैट वाज योर कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण. मैं इस गाने के साथ आपको लेके जा रही हूँ गाने की तरफ, और सुनते रहिए आप प्लीज, ताकि मैं आपको विनर अनाउंस करूँ. मैं अभी मैथ फॉर्मूले में डालने लगी हूँ सारे नंबर्स, और फिर जो विनर होंगे वो अगले दो मिनट में मैं गाने के बीच में आपसे अनाउंस करूंगी. प्लीज सुनते रहिए, स्टे ट्यून्ड. यू माइट हैव टू कॉल मी बैक टू गिव मी योर डिटेल्स.

योगेश्वरी, अगर आप सुन रही हैं तो यू आर द लकी विनर ऑफ दिस फ्लेवर लाउंज दाल मखनी या ढाबा स्टाइल चिकन करी. प्लीज कॉल कीजिए मुझे ताकि मैं आपका इन्फॉर्मेशन ले सकूं. योगेश्वरी, कंग्रेचुलेशंस. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo, dhuaan dhuaan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता, जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
7: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा, लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
8: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401, प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
9: भूख लगी
10: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
11: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
8: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
8: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
14: वेट, इतना सब और प्राइस?
8: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
15: मैं ही दोनों।
16: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
17: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
18: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
17: Kya matlab?
18: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
17: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
18: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
17: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
19: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
20: Excuse me. It's called being loyal.
19: It's called being predictable.
20: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
19: And what's so special at Neon Cactus?
20: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
19: Not bad.
20: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
19: Okay, this I didn't expect from you.
20: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
21: अपनी roots भी और टेक्सास का स्वैग भी, दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
1: हाय, दिस इज रानी मुखर्जी, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।
9: डालस की धड़कन 104.9 FM, फन एशिया रेडियो।

थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. आप सुन रहे हैं 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो. मैं हूं किरण आपके साथ. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. आज आपके साथ 5 के बजाय 6 बजे तक मौजूद हूं. और खूबसूरत गानों का सिलसिला तो हम हमेशा ही जारी रखते हैं. और एक और गिव अवे आपके लिए लेके आई हूं जो कि इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ से आपके लिए आया है. दिस इज योर चांस टू विन द स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार विच इज लोकेटेड इन फोर्ट वर्थ. तो ये आप इंडिया बाजार के बारे में क्या बताऊं आपको जी. वन स्टॉप डेस्टिनेशन है आपकी. ऑथेंटिक इंडियन ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, स्पाइसेस, स्नैक्स, डेली देसी एसेंशियल्स आपके सारे के सारे आपको इंडिया बाजार में मिलेंगे. और सबसे पहले आपको लोकेशन बता देती हूं उनकी. दे आर लोकेटेड एट 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ. बड़े जोर के बादल बाहर गरज रहे हैं और मुझे आवाज यहाँ अंदर स्टूडियो तक आ रही है. हालांकि हमारा स्टूडियो इज काफी साउंड प्रूफ बट आई कैन स्टिल हेयर दोज क्लाउड्स रोरिंग. सो प्लीज अगर आप कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाहर हैं तो जरा ध्यान रखिए. ओके, बैक टू इंडिया बाजार. सो अगर आप फोर्ट वर्थ में रहते हैं, कैलम में रहते हैं, हर्स्ट में रहते हैं, हैसलेट में रहते हैं, तो देन दिस इज द लोकेशन फॉर यू. और ये आपके लिए चांस है टू विन अ ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार लोकेटेड इन फोर्ट वर्थ. देखिए जी, आज हम बात कर रहे हैं अरिजीत सिंह की. अरिजीत के गाए हुए कुछ खूबसूरत गाने आपके लिए प्ले कर रही हूँ. बॉलीवुड स्पॉटलाइट में हमने स्पॉटलाइट डाली है अरिजीत सिंह पे. और आपसे मेरा सवाल बहुत सिंपल है. मुझे ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स जो फिल्म फेयर के अरिजीत ने जीते वो कितने हैं. ही स्टार्टेड हिज करियर इन 2007 अराउंड और अब 2026 आ गया है. तो इन सारे सालों में कितनी बार अरिजीत सिंह नॉमिनेट हुए ये तो मैं आपको बता देती हूँ. फिल्म फेयर में अरिजीत सिंह ने 24 नॉमिनेशंस पाई ओवर हिज जर्नी टिल टुडे. लेकिन उनमें से उन्होंने कितने अवार्ड्स जीते वो नंबर आपको मुझे बताना है 9722355555 पे कॉल करके. फोन उठाइए, कॉल मिलाइए और जीत लीजिए ये ग्रोसरी हैम्पर इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.

Raji, thank you. Thank you so much for all your calls and for participating in this India Bazaar's giveaway. Grocery hamper jeetne ka mauka hai aapke paas aur aap tamam logon ne mujhe bilkul sahi jawab diya. Sabse pehle to thank you Sumit, Anuj, Anu and many more jinhone call kiya. Abhi bhi phone lines baz ho rahi hain par gana khatm ho chuka hai, contest ka time bhi ho chuka hai khatm. Sabse pehle main aapko bata dun ke Arijit Singh ne a total of 8 फिल्मफेयर अवार्ड्स जीते हैं, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद. लेकिन फिलहाल आपको विनर अनाउंस कर देते हैं जी. जैसे आप जानते हैं मैं हमेशा मैथ के फॉर्मूले में डाल के नंबर विनर निकालती हूं, और आज के जो हमारे लकी विनर हैं वो हैं अनुज वर्मा. अनुज कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये ग्रोसरी हैम्पर ब्रॉट टू यू बाय इंडिया बाजार लोकेटेड इन फोर्ट वर्थ 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ. तो दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर वहां पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव अबाउट 5 to 6 डेज टू गो टू इंडिया बाजार Fort Worth and collect your grocery hamper. It'll be ideal if you give them a call after 2 days and check if your name has been added to the winners list. To ji ye to hui aap aur tamam log jinhone participate kiya, bahut bahut shukriya. Funny ji is tarah ke bahut sare giveaways aapke liye lekar aata hai. Kuch award winning gaane jo ke Arijit Singh ne gaaye jinke liye unhe mila Filmfare award, usme se jo last Filmfare award Arijit ne jeeta wo jeeta 2025 ki mein for the film Lapata Ladies. और गाना कौन सा था? ऑफ कोर्स ये वाला.

अरे जी, ये आपके लिए जो लास्ट उनको अवार्ड मिला था उसका अवार्ड विनिंग गाना यानी के सजनी फ्रॉम द मूवी लापता लेडीज, 8 अवार्ड्स, 24 नॉमिनेशंस इन ऑल इन फिल्म फेयर. सवाल आपसे मैंने यही पूछा था कि फिल्म फेयर का, वैसे तो मैं आपको बता चुकी थी कि 395 टोटल नॉमिनेशंस पाई हैं अब तक तमाम अवार्ड्स में जो के होते हैं इधर उधर बड़े छोटे, और उसमें से 124 अवार्ड्स जीते हैं अरिजीत सिंह ने. उनमें से फिल्म फेयर की अगर हम बात करें तो 24 अवार्ड्स में नॉमिनेशंस पाई और जीते उनमें से 8 अवार्ड्स. द फर्स्ट अवार्ड दैट ही वन वाज फॉर द मूवी आशिकी 2 एंड द सॉन्ग वाज तुम ही हो. ये अवार्ड उन्होंने जीता था 2014 में, और उसके बाद ही गॉट मेनी नॉमिनेशंस. द सेकंड अवार्ड दैट ही वन वाज सूरज डूबा फॉर द मूवी रॉय. और इसी तरह जी तीसरा अवार्ड जो उन्होंने जीता वो था ए दिल है मुश्किल गाने के लिए, फॉर ए दिल है मुश्किल. ये सारे गाने मैं आपके लिए अभी पीछे और एपिसोड वन में प्ले कर चुकी हूँ. उसके साथ नेक्स्ट अवार्ड दैट ही वन वॉज बद्री की दुल्हनिया एंड दैट वॉज रोके ना रुके नैना. एंड देन जालिमा के लिए उन्हें नॉमिनेशन मिली, और फिर तेरा यार हूं के लिए नॉमिनेशन मिली. ए वतन उन्होंने जीता, एंड कलंक का कलंक गाने का जो है उस मूवी के लिए उन्होंने उस गाने के लिए अवार्ड जीता. एंड लास्ट उसके बाद केसरिया एंड देन सजनी. ये है जी एक छोटी सी लिस्ट जो के अवार्ड जीते हैं अरिजीत सिंह ने. बाकी नॉमिनेशंस तो खैर बेहिसाब हैं. किस किस नॉमिनेशन की बात कीजिए.

0: We are heading on to a short break with this, but before that, I must tell you, अगर आपने अब तक page 3 eatery try नहीं किया, तो you're definitely missing out on something absolutely delicious. They are located in McKinney at Hub 121. और जी, this is where bold Indian street food meets modern flair. चाहे आप brunch, lunch, dinner, कोई भी activity आपने करनी है, friends के साथ, family के साथ, you want to have exciting time with your friends, spend some quality time with your loved ones, page 3 eatery is where you need to go. They are located at Hub 121. You can visit their website to check out more about them. That is page3eatery.com. 3 as in number 3. page3eatery.com. Safari khoobsurat
1: hai manzil se bhi. अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
2: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. लॉसिन ट्रैवल. फॉर नियरली 30 इयर्स, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस. लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री. कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
3: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
4: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
5: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
4: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
5: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
6: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself, free of charge. Services provided under written contract.

0: with a 3-day right to cancel.
1: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8 6 8 2 3 4 6 4 6 1 1 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
2: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन रिजल्ट्स में वेरी।
3: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
4: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी, जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
3: K2 ड्राइव मतलब?
4: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
3: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
4: 100%
5: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2 ड्राइव.com और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
6: Chicken banana. Chicken banana?
7: Bro, banana नहीं, banana. मतलब make the chicken right.
8: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
9: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.scodialcpa.com.
10: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
11: Calculating route, rerouting.
10: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
11: Location upgraded, now heading to India Bazaar Fort Worth.
10: क्यों?
11: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं। Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
10: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
8: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
11: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
12: मुबारक ईद मुबारक।
13: Is hosting Grand Chandrad Super Sale Eid Expo on Tuesday, May 26th at Frisco Hall Events Center from 12 p.m. to 12 a.m. 50 plus boutiques from different states, varieties of food vendors, food trucks, kids rides, henna artists and much more. Free entry and free parking. For booth and sponsorship, call or text Grand Bazaar organizer Sharmeen Hussain at 214-592-5259. Frisco Hall, located at 121 and Independence Parkway.
14: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
15: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: This is 104.9 FM Funny Journey Radio, your afternoon drive time with Sunehri Kiran, and it is time now to connect you with our URA Debt Relief segment. Hamare saath maujood hain Aman ji from URA Debt Relief, jo hame batayenge ki why and how URA is helpful to you and why you should use URA. Let's welcome him on the airwaves of Fun Asia. Good afternoon, Aman ji. How are you doing?
1: Good afternoon, Fun Asia sunne wale sabhi listeners ko URA aur Aman ki taraf se namaskar. So, दोस्तों ये महीना चलते चलते अब ऑलमोस्ट हाफ से भी आगे निकल गया है, तो बहुत सारे दोस्तों ने वो गलती दोहरा दी होगी जो पिछले महीने की या पिछले साल की, क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट रेगुलर भरते जा रहे हैं. लेकिन आपको ये पता है, बाखूबी पता है कि मिनिमम पेमेंट से आप क्रेडिट कार्ड वालों की तिजोरियां भर रहे हैं, अपनी खाली कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड वाले आपसे 40-47% इंटरेस्ट हर महीने चार्ज करते हैं, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट. तो अगर आप 100 रुपए देते हैं तो 47% तो डॉलर तो आपके उसके इंटरेस्ट में ही चले जाते हैं, और अगले महीने फिर से इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है और वो अमाउंट फिर वहीं की वहीं आ जाती है. तो अगर आप परेशान हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा नहीं उतर रहा है, ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड बल्कि बिजनेस के क्रेडिट कार्ड, स्टोर के क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन्स, इन सब का लोन उतारते उतारते आप थक गए हैं लेकिन लोन है टस से मस नहीं हो रहा, या फिर गाड़ियों के लोन की बात करें, जो गाड़ी रीपोजेस हो गई है बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट, या टोटल हो गई है और इंश्योरेंस ने क्लेम दिया लेकिन पूरा नहीं, अब बाकी का लोन तो आपको उतारना है, उन लोन्स को आधे से ज्यादा माफ करवा सकते हैं. जब आधा से ज्यादा लोन माफ हो जाएगा तो बाकी आधे बच्चे की इंटरेस्ट फ्री किस्तें बनवाई जा सकती हैं. इंटरेस्ट भी इलिमिनेट हो गया, प्रिंसिपल भी रिड्यूस हो गया, इससे बढ़िया और आइडिया क्या हो सकता है. तो आप भी अगर चाहते हैं कि डेट से छुटकारा, जल्दी से डेट एलिमिनेट करना, तो URA को कॉल कीजिए. हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 888-888-9914. सारे 8 है, बाकी 99-14. और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, डायरेक्टली कॉल मी 9167763555, 9167763555, और हमारी वेबसाइट है www.ura.org. URA के स्पेल है oora.org. तो अगर नंबर नहीं भी लिख पाए तो कोई जल्दी नहीं है, आप फन एशिया रेडियो का नंबर तो आपको कंठस्थ याद है, कॉल कीजिए अच्छे से गाने की फरमाइश के साथ, अपने दोस्त अमन का नंबर ले लीजिए और सेटलमेंट कराइए और डेट फ्री हो जाइए.
0: Thank you so much, Amanji, for connecting with us this afternoon. We will talk to you next time.
1: Thank you.
0: Have a good one.

अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं जी, या फिर देर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो वी ऑल नो सच सिचुएशंस कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. यू हैव टू डील विद योर ऑफ कोर्स योर हेल्थ, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज, लीगैलिटीज, पेपर वर्क. यू डोंट वांट टू डू दैट. देर आर लॉट्स ऑफ निटिग्रिटीज इन दिस एंड यू वॉन्ट एन एक्सपर्ट लॉयर और एन अटर्नी टू हैंडल योर केस फॉर यू. एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी ओमर ख्वाजा. ना सिर्फ ये कि अटर्नी ओमर ख्वाजा आपका केस फाइल करेंगे, बल्कि दे विल हेल्प यू गेट द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग अनटिल यू विन. तो आपके लिए ना सिर्फ स्ट्रेस रिलीज होता है, स्ट्रेस में एक आसानी मिलेगी, बल्कि एक विन विन सिचुएशन है. इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट, और इफ यू नो ऑफ एनी वन हु इज गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट, देन द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज गिव देम और योर सेल्फ ओमर ख्वाजाज नंबर. दैट नंबर इज 469-300-5046. That is attorney Omar Khwaja's number. Ya phir aap unki website visit kijiye to find out more about them. That website is attorneyomar.com, which is OMAR, attorneyomar.com.

और अजी इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है. आज मैं आपके साथ 5 o'clock के बजाय 6 o'clock तक मौजूद हूँ. इसीलिए हमारा जो ट्रैफिक है, करेंसी, वेदर, गोल्ड प्राइस, वो सब कुछ मैं आपको 5 बजे की खबरों की ब्रेक के बाद दूंगी. सो विद दिस सॉन्ग वी आर हेडिंग ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक. आफ्टर दैट आई विल ब्रिंग यू न्यूज एज वेल एज वेदर अपडेट, ट्रैफिक अपडेट, गोल्ड प्राइस अपडेट. लॉट्स ऑफ थिंग्स आर लाइंड अप फॉर यू. बने रहिए हमारे साथ. दिस इज योर ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण शो. मैं मौजूद हूँ आपके साथ 6 o'clock, you and me together.

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. दिस इज योर ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और वैसे तो आप मुझे 5 बजे तक सुनते हैं एवरी डे. मंडे टू फ्राइडे मैं होती हूँ 2:30 PM टू 5 PM आपके साथ. लेकिन आज आपके साथ एक घंटा और मौजूद हूँ टिल 6 PM. आई विल बी हेयर विद यू. मैं हूँ किरण और आप सब मेरे साथ 9722355555 के थ्रू. इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द वेदर अपडेट. ट्यूजडे है जी आज May 19th 5:14 PM इन द स्टूडियो. और मौसम है बहुत ही खतरनाक. सिटी ऑफ मिकिनी में 68 डिग्रीज है. इट फील्स लाइक 68 एज वेल. बारिश हो रही है और कुछ जगहों पे काफी तेज यानी कि मूसलाधार बारिश हो रही है और कुछ जगहों पे थोड़ी सी हल्की. आपको बताते चलें कुछ एक्सटेंडेड फोरकास्ट के बारे में कि शावर्स और थंडरस्टॉर्म्स रहे पूरा दिन और आने वाले टाइम में भी रहने वाले हैं. हाइज जो है वो मिड 80s में रहेगा. मोस्टली क्लाउडी रहेगी शाम. अ चांस ऑफ शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स इन द इवनिंग देन अ स्लाइट चांस ऑफ शावर्स आफ्टर मिडनाइट एज वेल. टेम्परेचर्स जो हैं वो मिड 60s तक ड्रॉप होने वाले हैं. सो इट्स गोइंग टू बी अ नाइस डे ऑल्दो अ वेरी वेट इवनिंग फॉर ऑल ऑफ अस. और इसी के साथ आपको बताऊं पोलन काउंट आज का 5.8 है विच इज मीडियम. ग्रास और ओक इज व्हाट इज बॉदरिंग अस. लेकिन बारिश में थोड़ा सा पोलन कंट्रोल में आ जाता है. ऑल्दो यूवी इंडेक्स इज 9 आज का यूवी इंडेक्स. ऑल्दो बादल आपको नजर आए लेकिन फिर भी यूवी इंडेक्स की शिद्दत वैसी की वैसी ही है 9 विच इज हाई. सनराइज आज का हुआ 6:24 AM पे और आज का सनसेट होगा 8:22 PM.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Peter ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, zyada paperwork. Option C, credit score ka concern. Ya option D, loan decline hone ka dar.
6: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
5: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
7: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
4: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338, द SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
8: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन, आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड।
9: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल,
8: इट्स कॉल्ड बीइंग predictable.
9: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
8: And what's so special at Neon Cactus?
9: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, zabiya halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
8: Not bad.
9: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
8: Okay, this I didn't expect from you.
9: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
10: बेटा, इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
11: मम्मा, कोशिश तो कर रहा हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा है।
10: रोज का सेम प्रॉब्लम।
12: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। Lumity लर्निंग सेंटर, जहाँ बच्चे रटते नहीं समझते हैं। Lumity का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
13: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रांग क्रिटिकल थिंकिंग।
14: कन्वीनिएंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
15: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फाइनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। Lumity लर्निंग सेंटर, बिल्ड मास्टरी, अनलॉक पोटेंशियल।
16: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
17: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
16: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
17: वेट, व्हाट?
4: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
18: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
4: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
19: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
14: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
20: डालस की धड़कन 104.9 FM फनेजिया रेडियो।

एंड विद दैट इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द करेंसी अपडेट. वैसे मैं आपके लिए करेंसी अपडेट लेकर आती हूँ 4:30 PM बिटवीन 4:30 and 5 PM, लेकिन आज आपके साथ 6 बजे तक मौजूद हूँ. सो इट इज टाइम नाउ. आज है जी ट्यूजडे May 19th, 5:32 PM इन द स्टूडियो एंड अकॉर्डिंग टू xrates.com, यूरो आज ट्रेड कर रहा है 0.86 पे विद रिस्पेक्ट टू $1. ब्रिटिश पाउंड इज ट्रेडिंग एट 0.74, जबकि इंडियन रुपी 96.65 पे ट्रेड कर रहा है. नेपालीज रुपी इज ट्रेडिंग एट 154.71, जबकि पाकिस्तानी रुपी इज ट्रेडिंग एट 278.56. और इसी के साथ बांग्लादेशी टका 122.75 बांग्लादेशी टकर्स आर ट्रेडिंग फॉर $1. इस गाने के उस पार आपको बताऊंगी गोल्ड प्राइस अपडेट. बने रहिए.

0: कि मैं सारे काम काज करूं। Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
1: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
0: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
2: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
2: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
7: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
8: सब कुछ साफ रख सकते हो,
9: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
10: क्योंकि ये कौन बोला?
9: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
11: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
12: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
13: Goodness is a beautiful thing. And good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadaqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.

104.9 FM Fun Asia Radio सुन रहे हैं आप. ये है एक्सटेंडेड वर्जन. 5 बजे तक आप मुझे सुनते हैं. मैं हूँ किरण, आपके लिए लेकर आती हूँ आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. आज 6 बजे तक आपके साथ मौजूद हूँ. और आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं जी कि देसी मंडी आपने अगर अब तक विजिट नहीं किया तो यू डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑन अ शॉपिंग एक्सपीरियंस, देसी शॉपिंग एक्सपीरियंस. दे आर लोकेटेड इन लुइसविल, टेक्सास, बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर इन टाउन. और ब्रिलियंट ऑफर्स आपके लिए लेकर आते हैं ऑन ऑल द ग्रोसरी आइटम्स. चाहे आपको रेगुलर सब्जी वगैरह खरीदनी हो, या आपको डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदने हो, या आपके जो हमारे रेगुलर ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स होते हैं देसी, यानी कि दाल चावल और सो मेनी चीज़ें, मसाले, मिर्च एंड दिस एंड दैट. और उसके साथ मीट का बहुत ही क्लीन और बहुत ही ऑर्गेनाइज सेक्शन है उनके पास. सो आप ज़रूर विजिट कीजिए देसी मंडी. और जब आप शॉपिंग करके पूरी तरह थक जाएं और अब आपको भूख लगी है, तो फिर देसी मंडी ब्रिलियंट आपके लिए खाने पीने की ऑफर्स भी लाता है, बिकॉज दे हैव अ वर्किंग एंड अ ब्रिलियंट रेस्टोरेंट वर्किंग इन साइड देसी मंडी. और आजकल तो उनके ऊपर बेहतरीन डील्स लगी हुई हैं. और कौन सी डील है जी? हमारा फेवरेट वर्ड बोगो, यानी कि बाय वन गेट वन बिल्कुल फ्री. वीक डेज में 5 PM to 9 PM बोगो डील चल रही है. मंडे और वेंसडे को अगर आप 5 बजे से 9 बजे तक जाएंगे तो यू विल गेट वन एंड बाय वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी, नूडल्स एंड फ्राइड राइस. इसी के जगह अगर आप ट्यूजडे और थर्सडे को जाएंगे तो आपको मिलेगा 5 बजे से 9 बजे तक बाय वन गेट वन फ्री ऑन डोसाज एंड चाट्स. यानी कि आज है ट्यूजडे, अगर आज आप अभी गए तो आपको बाय वन गेट वन मिलेगा डोसाज एंड चाट्स पे. इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड ऑन अ टाइट बजट, दिस इज एन अमेजिंग डील फॉर यू. जरूर जाइए और बाय वन गेट वन को अवेल कीजिए. आवर फेवरेट बोगो डील इज गोइंग ऑन एट देसी मंडी, 5 PM to 9 PM मंडे थ्रू थर्सडे. नो मिक्स एंड मैच इज अलाउड, तो ये ध्यान रखिएगा. देसी मंडी, दे आर लोकेटेड इन लुइसविल, टेक्सास. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हेड ऑन देयर.

This part of our show is brought to you by AG FinTechs, one of the fastest growing tax firms in the US. Offer karte hain ji innovative financial services with untapped potential for both individuals as well as businesses. Trusted hain aur efficient hain, and they get you ready for your future. Koi bhi sawal hai aapka to aap agfintechs.com pe log on kar sakte hain. They have lots of information available on their website. If you need to call and talk to someone, then that number is 469-942-9888 469-942-9888. और इसी के साथ मैं आपको ट्रैफिक की अपडेट देते हुए रैप अप कर रही हूँ मेरे और आपके इस सफर को, जो 2:30 बजे से शुरू हुआ था, 6 बजे तक मैं आज आपके साथ थी. तो जी, सबसे पहले तो ये कि एक कोलिजन हमें नजर आ रहा है, एंड दैट इज एट लूप 12 टूवर्ड्स शेडी ग्रोव रोड साउथ बाउंड, जिसकी वजह से वन लेन इज ब्लॉक्ड. द सिवेरिटी ऑफ द इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई, कॉजिंग अ लॉट ऑफ बैकअप. एक और इंसिडेंट जो कि अभी 25 मिनट्स पहले रिपोर्ट हुआ है, इट इज अ कोलिजन एट US 67 एट विंटर ग्रीन रोड नॉर्थ बाउंड, और इसकी वजह से जी टू लेन्स आर ब्लॉक्ड इंक्लूडिंग द एग्जिट लेन. द सिवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई एज वेल, एंड a lot of backup is expected at this spot. क्योंकि ये 20 मिनट पहले अभी इशू हुआ है, तो अभी ट्रैफिक यहाँ पे बिल्ड हो रही है. और आप जानते हैं कि मौसम कुछ इस तरह का है कि वैसे ही कार स्लो हैं, और उसके बाद एक भी लेन बंद हो जाए तो इट कैन बी रियली रियली स्ट्रेसफुल. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, बी वेरी विजिलेंट वेयर एवर यू आर गोइंग एंड वेयर एवर यू आर ड्राइविंग.

जी हाँ, लो में कयामत तक हुआ तेरा, लेकिन मेरे जाने का वक्त आ चुका है. थैंक यू सो मच आज की दोपहर मेरे साथ इस जर्नी में कनेक्ट करने के लिए. मैं आपसे मिलूंगी कल एक बार फिर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण 2:30 PM, और कल भी आपके साथ गालिबन 6 बजे तक मौजूद होंगी. इफ एक्सटेंडेड तो 6:30 तक भी हो सकती हूँ, वो मैं आपको कल ही बताऊंगी. बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए. फन एशिया कीप्स यू एंटरटेन्ड एज वेल एज इन्फॉर्म्ड 24/7 365 days a year. हम रहते हैं आपके साथ, आप भी रहते हैं हमारे साथ. थैंक यू सो मच एंड हैव अ प्लीज बी सेफ वेयर एवर यू आर ड्राइविंग एंड हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर इवनिंग.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Mamu, dekho kya ho gaya.
7: Oh, kya ho gaya?
6: Nayi gaddi li thi, itne mein dam tod diya. Aur aapki itni purani Mercedes, abhi bhi nayi jaisi kaisi chal rahi hai.
7: Oye, German ka kamaal hai.
6: Meri gaddi bhi to German hai.
7: नहीं होए जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन मर्सिडीज ऑडी बीएमडब्ल्यू वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार तू नंबर लिख मुन्नी 972-690-6623 कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार
8: जर्मन मोटर्स कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस
9: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती उनके लेवल्स होते हैं लेवल 1 मिक्स वेज पकौड़ा लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल स्लो कुक्ड कीमा मटर रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस
10: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ फ्लेवर हम संभाल लेंगे
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
13: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट
14: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर लॉसिन ट्रैवल फॉर नियरली 30 इयर्स लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स वेकेशन पैकेजेस क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
15: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
16: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस
17: अरे रिलैक्स यू नीड अ कूल थेरेपी
16: थेरेपी वो तो बहुत महंगी है
17: नहीं कूल मतलब कूल चा थेरेपी
16: ये क्या होता है
17: सिंपल चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन
18: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस
19: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park Plano near downtown for the Ambuj Basant Mela powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a pan-India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela powered by Bana. Telangana. Supported by Nijor Indian Nonprofit Organization, NDAW.
10: For booth and sponsorship contact, admin@ambuj.us.

0: are capable of anything.
1: हेलो एंड वेलकम दोस्तों यारों, मैं हूँ पारो. थैंक यू सो मच किरण जी फॉर डूइंग एन एक्सटेंडेड शो. और मैं सुनती हुई आ रही थी किरण जी को, एंड आई वांट टू सी देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक आउट देयर, एंड आई होप यू ऑल हु आर ड्राइविंग सेफली एंड रनिंग होम सेफली, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठीक है अभी तो, एटलीस्ट इन सम पार्ट्स ऑफ DFW. बट पहले बहुत घमासान बारिश हुई है, सो ट्रैफिक और बहुत जगहों पर लेन क्लोजर्स और इस तरह की चीजें हैं. एंड आई नो किरण जी गेव यू एन अपडेट, आई वाज आल्सो लिसनिंग टू दैट. बट इन एनी केस, दोज हु आर ड्राइविंग वुड नो दिस इन रियल टाइम. सो यस, स्टे सेफ. कोई गाना सुनना चाहते हैं, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा लंबा रहूंगी, यानी कि आज आप लोगों के साथ 9 बजे तक रहूंगी, सो क्लोज टू 3 आवर्स. सो इफ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड दैट फिट्स द मूड ऑफ ट्यूजडे इवनिंग, यू नो द नंबर टू कॉल, 972-355-5555 है स्टूडियो का नंबर.

This part of the show is brought to you by Connecting America. With Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful income stream through a unique insurance-based strategy designed to boost your bottom line. और यहीं पर नहीं खत्म होती है इनके बाद. They also help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less. So don't wait. Call James today at 321-888-7345 or visit connectingamericafinancials.com and start turning your daily expenses into income. Connecting America एक ऐसी जगह है जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट इनटू कैश. और अभी इस वक्त बहुत प्यारा वेदर, हमेशा मैं बोलती हूँ लेकिन इस बार आई थिंक वेदर अच्छा है. अगर आप अंदर से देखें, खिड़की से बाहर जाकर देखें, बट इफ यू आर स्टक इन ट्रैफिक एज सम ऑफ आवर लिसनर्स आर जो कॉल करके बता रहे हैं, तो आई नो इट इज नॉट ऑलवेज वेरी प्यारा व्हेन यू वांट टू रीच होम, लेकिन फंस जाते हैं आप ट्रैफिक में और बारिश में, तो मन करता है कि जल्दी से जल्दी घर पहुंचे और गरम गरम चाय, कड़क चाय अदरक वाली, और उसके साथ कुछ बढ़िया से या तो आलू परांठे हो जाएं, या फिर बिकॉज आई यूज्ड टू लव when I was growing up in Delhi, आलू के परांठों को ना डिप करके इन चाय वॉज माई फेवरेट थिंग. और ऐसा बहुत जगह मिलता भी है. इफ यू गो टू लाइक सम ढाबे पंजाब साइड में, अगर आप ढाबों वगैरह में जाएंगे तो चाय के साथ ही लोग आलू परांठा खाते हैं, तो मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली लगता है. लेकिन कचौड़ी, समोसा, दीज आर ऑल्सो वेरी कॉमन थिंग्स. कहने का मतलब है कि कुछ तड़क भड़क ऐसा खाने का मन करता है इन दिस ब्यूटिफुल वेदर, और मन करता है प्यारे प्यारे बारिश वाले सॉफ्ट गाने सुनने का. सो इफ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड, यू नो द नंबर टू कॉल. रिक्वेस्ट मेरे पास आनी शुरू हो गई है, सो आई विल बी प्लेइंग दिस एंड योर रिक्वेस्ट. और अगली जो रिक्वेस्ट है वो बारिश वाली ही है, उसमें तो छतरी लेके घूम रहे हैं नसुद्दीन शाह साहब, नीलेश साहब की रिक्वेस्ट पर.

0: जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़ावे स्वीट 205 फ्रिस्को।
2: चिकन बनाना, चिकन बनाना
3: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
4: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
5: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
6: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
7: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
8: क्या?
7: सैलरी बंद हो जाती है
8: और बिल्स बंद नहीं होते।
7: एग्जैक्टली, इसलिए स्मार्ट लोग वेल्थ टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं।
8: मतलब
7: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता।
1: द वेल्थ टैक्टिक, स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर रिटायरमेंट इयर्स। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
9: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
10: Arre yaar, Dallas mein Punjab?
11: Bilkul, Chandigarh Wale, jahan butter chicken bhi asli aur naan bhi tandoor se garma garam.
4: From buttery curries and fresh naan to street-style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian Food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
12: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

वेलकम बैक। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब हमारे लिसनर कॉल करके बारिश की बात कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं, देखिए मॉनसून आ गया है। और वैसे तो मॉनसून वर्ड हम यूजुअली साउथ ईस्ट एशिया में यूज करते हैं, क्योंकि वो मॉनसून वेव्स जो उठकर आती है इंडियन ओशन से, सो उसको मॉनसून कहते हैं। लेकिन देखिए यहां पर अगर बारिश होती है, स्पेशली अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि मॉनसून में तो बहुत बारिश होती है, मॉनसून के जो महीने होते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर फ्रॉम इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें, एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि पाकिस्तान में कब मॉनसून आता है, हमारे जो पाकिस्तान के लिसनर्स हैं वो बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली की हूँ, आई कैन टेल यू दैट दिल्ली में मॉनसून मेरे जन्मदिन के आसपास आता है, मतलब दैट इज द बिगिनिंग ऑफ जुलाई, तो जुलाई में पहुंच पाता है मॉनसून। एंड अगर जून में बारिश होती है तो उसे प्री मॉनसून शावर कहते हैं। लेकिन जो साउथ में है, या अगर आप इधर से कोस्टल एरियाज में देखें, तो वह मॉनसून बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि वहां से उठता है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न, एक मॉनसून का पैटर्न है। एंड आई रियली लाइक द वर्ड मॉनसून, बिकॉज इट टेक्स अस बैक टू दोज मेमोरीज, जब हम बहुत स्कूल जाते थे, आते थे और बहुत नाचते थे बारिश में, तो वो सारी मेमोरीज ताजा हो जाती है। अगर आपकी बारिश के साथ कोई मेमोरी जुड़ी हुई है, समथिंग न्यू और ओल्ड, बचपन की हो सकती है, अभी की हो सकती है, कॉल इन एंड आई वुड लव टू हियर दैट। फिलहाल गाना चलाना चाहती हूँ, चलते चलते चलते चलते नहीं, ये है चलते चलते फिल्म का गाना, एंड इसकी रिक्वेस्ट करी है हसन साहब ने। थैंक यू सो मच हसन साहब, कल भी आपसे बात हुई, आज भी आपसे बात हुई, और उम्मीद करती हूँ कल भी आपसे बात होगी।

अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी एंड दैट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू दिस दिस सॉन्ग. अगला गाना मैं चलाऊंगी वो भी हमारी रिक्वेस्ट ही है, और उस रिक्वेस्ट से पहले मैं एक सवाल पूछती हूँ विच इज टाइड टू अवर गिव अवे ऑफ चंडीगढ़ बाइट्स. तो पहले आपको बता देती हूँ गिव अवे क्या है, फिर बताती हूँ चंडीगढ़ बाइट्स के बारे में. अगर आप नहीं जानते ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि चंडीगढ़ बाइट्स इज वेरी वेरी पॉपुलर इन DFW एरिया, बट फिर भी बताती हूँ आपको और उसके बाद होगा सवाल. तो थोड़ा सा इंतजार करिए. हियर इज योर चांस टू विन द कड़ाई पनीर और कड़ाई चिकन. तो वेजिटेरियन है तो कड़ाई पनीर, और अगर चिकन खाते हैं और मन कर रहा है चिकन खाने का तो कड़ाई पनीर. वन ऑफ दीज डिशेज कैन बी योर्स फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन. प्लस अगर आप वहां लंच टाइम में जाते हैं, यू कैन एंजॉय द स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली. इट इज लोकेटेड ऑफ मैकडरमेट ड्राइव इन एलन. आप जा सकते हैं chandigarhbites.com की उनकी वेबसाइट पर फॉर मोर डिटेल्स. एंड नाउ लेट्स डू द गिव अवे. सो गिव अवे का सवाल क्या है? सवाल ये है, ये जो गाना है ये वैसे बहुत ही मुझे पसंद है गाना, तो थैंक यू सो मच हसन साहब फॉर रिक्वेस्टिंग दिस सॉन्ग, क्योंकि मेरी बड़ी सारी मेमोरीज ताजा हो जाती हैं. और रानी मुखर्जी और शाहरुख खान है इसमें. मनोना थिंक अबाउट रानी मुखर्जी, आई समटाइम्स थिंक अबाउट हर करियर ट्रेजेक्टरी, और मैं कई बार ये सोचती हूँ कि उनकी पहली फिल्म कौन सी थी. और इंटरेस्टिंगली मैंने उनकी पहली फिल्म देखी है, बहुत लोगों ने शायद नहीं देखी हो बिकॉज लॉट ऑफ इट वॉज नॉट एज पॉपुलर. मेरे पास लाइन्स बजने लगी हैं. नहीं, मैं सवाल नहीं पूछ रही कि पहली फिल्म कौन सी है. हिंदी में पहली फिल्म अलग है, बंगाली में पहली फिल्म अलग है. नहीं, मैं उन नाम नहीं पूछ रही हूँ, क्योंकि नाम इज स्टिल वेरी पॉपुलर, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल नो. मैं पूछ रही हूँ कि उस पहली फिल्म में, हिंदी की फिल्म की बात हो रही है, बंगाली फिल्म की नहीं, जो उनकी हिंदी फिल्म है जो उनका होम प्रोडक्शन थी उसमें जो हीरो थे वो उनका नाम क्या था. और वो हीरो का नाम शायद बहुत लोगों को ना पता हो, लेकिन उनके पापा जी बड़े फेमस है. उनके पापा जी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन कैरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम्स. तो उनके जो बहुत हमारे एक फेमस विलन रह चुके हैं, अभी नहीं है हमारे बीच में, उनके बेटे ने हीरो का किरदार निभाया था इस 1997 वो फिल्म. तो वो बेटे जी का क्या नाम है? 972355555 मेरे पास कॉल्स आने लगी हैं. दिस इज योर चांस टू विन कड़ाई पनीर और कड़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स. अगला गाना की रिक्वेस्ट भी बता देती हूँ, छम छम केशवी की है.

0: छम छम छम, बहुत सारे मेरे पास भी कॉल टपक रहे हैं. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर ऑन एयर.
1: हेलो.
0: हाँ जी,
1: आपने सवाल पूछा था, उसका एक्टर का नाम शादाब खान है, मूवी का नाम राजा की है कि बड़ा.
0: एब्सोल्युटली राइट सर, विनर मुझे मिल गया. बट थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग फाइनेंशियल रेडियो. बहुत सारे कॉल्स आए हैं, थैंक यू सो मच. आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी गॉट इट राइट. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर ऑन एयर.
2: Yes, hi. The name of the actor is Sadat Khan.
0: Yes. Yeah, that's absolutely right. Thank you so much for trying. I got the winner though, but thank you so much. Funisha Radio, you are on here.
1: Hello?
0: Yes, Funisha Radio, you are on here.
1: Yeah, I just called you. I just told you the answer.
0: Yes, yes, Sadat Khan. Thank you so much. I got the winner though, but thank you. Yes. So the first person to give the right answer is Prashant Dave. Although मेरे पास पहला call जो आया था उन्होंने कहा था कि I think उन्होंने शायद ये कहा था अमजद खान के बेटे, लेकिन I needed the name. और हमें you know, as I always say with the giveaway, we have to move fast क्योंकि वक्त कम होता है, सारी lines बज रही होती हैं. So if you are ready with the answer, you get it. But otherwise, in the you know, in the interest and to be fair to everyone, we have to move fast. So the first person to give the right answer, which is the name पूछा था मैंने आपसे, कौन सा है नाम जो बड़े फेमस विलन के बेटे हैं और अमजद खान साहब के बेटे शादाब खान काफी उनके जैसे दिखते हैं. इनफैक्ट अब जैसे उनकी एज बढ़ गई, इफ यू सी हिज मोर करंट पिक्चर्स, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल उन्हीं की झलक है. सो ही लुक्स वेरी मच लाइक दैट. नहीं चल पाए इस फिल्म नहीं, और वैसे भी वो व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग मे बी अपने फादर से ये उन्होंने विरासत में नहीं ली है, बहुत अलग सारी चीजें ली हैं. ही डज अ लॉट ऑफ अदर क्रिएटिव थिंग्स, बट व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग नहीं, अमजद खान वाली बात नहीं थी, नहीं चल पाए. लेकिन फिर भी लोग उनको बहुत ज्यादा इसलिए जानते हैं क्योंकि गब्बर सिंह के बेटे हैं. प्रशांत दवे साहब, कंग्रेचुलेशंस.

0: अरे सुनना, आज ऑफिस से आते हुए मैंने फ्रिस्को में एक नया स्टोर देखा।
1: कौन सा?
0: कैरेट लेन।
1: वेट, व्हाट? कैरेट लेन इंडिया वाला?
0: हाँ वही।
1: थैंक गॉड, यहाँ हर रोज पहनने लायक कुछ मिलता ही नहीं था इजीली।
0: देखा, ढूंढ के दिया ना।
2: इंडियाज मोस्ट लव्ड एवरीडे ज्वेलरी ब्रांड नाउ इन फ्रिस्को, लाइट वेट रियल डायमंड्स मेड फॉर एवरीडे। कैरेट लेन, अ टाटा प्रोडक्ट।
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
5: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
4: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
6: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
7: इन प्लेनो।
6: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
12: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
0: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना? जस्ट लाइक दैट, when it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
13: Dude, life mein kuch aisa karna hai, jisme main front page pe रहूं।
14: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
13: कैसे?
14: पेज 3 ईटरी?
13: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
14: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
13: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
2: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट। Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
15: Calculating route, rerouting.
5: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
15: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
5: क्यों?
15: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं। Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
5: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
16: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
15: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
17: मुबारक ईद मुबारक।
18: Bazaar is hosting Grand Chandrad Super Sale Eid Expo on Tuesday, May 26th at Frisco Hall Events Center from 12 p.m. to 12 a.m. 50 plus boutiques from different states, varieties of food vendors, food trucks, kids rides, henna artists and much more. Free entry and free parking. For booth and sponsorship, call or text Grand Bazaar organizer Sharmeen Hussain at 214-592-5259. Frisco Hall, located at 121 and Independence Parkway.
19: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

वेलकम बैक. बस थोड़ा सा ही वक्त बचा है ये शो खत्म होने में, लेकिन मैं रहूंगी आप लोगों के साथ 7 से 9 वाले शो में जब मैं आती हूँ यूजुअली. तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी आई हूँ आप लोगों से बात करने मिलने, एंड आई विल बी स्टेइंग हियर टिल 9 PM, यानी कि वी विल हैव टाइम फॉर अनदर गिव अवे. थोड़ी देर पहले एक गिव अवे किया था, बट येस वी विल हैव टाइम फॉर मोर गिव अवेज एंड ऑल्सो समथिंग इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट. वट इज इट अबाउट टूडे? क्या है आज? मे 19th है, ट्यूजडे है. बहुत प्यारा वेदर है, गर्मी नहीं है लेकिन थोड़ी बारिश है. थोड़ा ट्रैफिक भी हमारे लिसनर कॉल करके बता रहे हैं काफी ज्यादा. मैंने खुद भी रियलाइज किया व्हेन आई वाज कमिंग, इट वाज सच अ बैड ट्रैफिक एंड कुछ रोड क्लोजर्स एंड लॉट ऑफ दोस थिंग्स, बट द वेदर इज आल्सो वेरी प्लेजेंट. सो आई थिंक इट इज स्पेशली जब ऐसा थोड़ा बारिश कम हो जाएगी एंड वेन यू आर सिटिंग, इट्स लाइक बाहर अगर आप बैठे हैं बालकनी में या छत पर. हम लोग इंडिया में, हम लोग छत पर बहुत ऐसे वेदर में टाइम बिताया करते थे, टेरेस पे, एंड वहां पे बैठ के ठंडी ठंडी हवा में बहुत अच्छा लगता था. और जब थोड़ा सा शाम होने लगती है, ढलने लगता है, शाम तो हो ही गई है वैसे, लेकिन सूरज ढलने लगता है या थोड़ा अभी इस टाइम पे देर में ढलता है और चांद और सितारे निकल कर आते हैं तो और भी ज्यादा सुंदर लगता है, और ठंडी ठंडी हवा में. सो इट्स सच अ ब्यूटिफुल वे टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स आई फील इन दिस वेदर.

इफ यू वांट टू गेट समथिंग स्पेशल फॉर अ लव्ड वन, मलाबार के बारे में बता देती हूँ. Malabar Gold and Diamonds is a place where you can shine bright with diamonds, and it is the Dallas location of Malabar Gold and Diamonds is on Preston Road in Frisco. That is your go-to destination for stunning diamond rings, earrings, necklaces, and many more such things that sparkle with every special moment. Classic solitaire se lekar contemporary styles inke paas hote hain. Their diamond collection blends superior quality with timeless design. Perfect for engagements, anniversaries, or just celebrating love. आप उनकी मोबाइल ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं मालाबार की for more details. So yes, that is about मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स. फिलहाल आपको बताना चाहती हूँ दैट एक इंटरेस्टिंग बात, अगर इफ यू वांट टू लिव लॉन्ग, हु डजंट वांट टू लिव लॉन्गर, राइट? जिंदगी इतनी प्यारी है, हम सब ज्यादा से ज्यादा इंजॉय करना चाहते हैं जितना ज्यादा हो सकता है. जितना लंबा जियेंगे, कोशिश भी यही रहती है कि उतना ज्यादा इंजॉय करें, क्योंकि लाइफ सिर्फ क्वांटिटी में लंबी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी में भी अच्छी होनी चाहिए. सो वी रियली वांट बोथ, वी वांट लॉन्ग लाइफ एंड ब्यूटीफुल लाइफ. तो एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ आपको. सबसे मेरी नहीं है ये विजडम, ये सबसे ओल्ड इंसान की विजडम है. द ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन करंटली जो भी है, उनका नाम है जोआओ मारिन्हो नेटू. और नेटो ये जनाब जो हैं ये ब्राज़ील के हैं, एंड ही इज सुपर सेंटेनेरियन, क्योंकि इन्होंने अभी बहुत रिसेंटली उन्होंने 113 ईयर्स यानी कि 100 में 13 जोड़ दीजिए और एक्चुअली शायद ऑलमोस्ट 114 भी होने वाले हैं जल्दी से. ही इज एक्चुअली द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग मैन कंटेम्प्रेरी. लेकिन खाली यही बात नहीं है, ऐसे तो बहुत सारी न्यूज आती रहती है, कोई ये सबसे ओल्डेस्ट है, फिर उनको उनसे ज्यादा कोई और निकल जाता है. लेकिन मुझे जो बहुत अच्छी लगी है कि इनकी कुछ लाइफस्टाइल अगर आप देखें और इनके जो फिलॉसफी देखें, वो ऐसा मुझे लगता है कि हर किसी को अपनाना चाहिए. अब हर कोई अपना के 113 ईयर तक जिएगा कि नहीं, गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में नाम आएगा कि नहीं, लेकिन जिंदगी जितनी भी लंबी होगी बहुत अच्छी होगी. ये कहते हैं दैट हिज सीक्रेट ऑफ लॉन्जिटिविटी एंड हैप्पीनेस इज बींग सराउंडेड बाई गुड पीपल एंड कीपिंग हिज लव्ड वंस क्लोज. अपने पास आस पास, ये मैं बहुत मानती हूं, आई मीन ये तो बहुत ज्यादा हम सभी कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि अपने जो लव्ड वंस हैं उनके पास रहें, जो हमारा परिवार है, जो हमारे फैमिली है, दोस्त हैं, जो हमारे बड़े अजीज हैं, उनके साथ हम रहें. ये कोशिश बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करते हैं, मैं सच में मानती हूँ. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग ये नहीं कोशिश करते दैट दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय गुड पीपल, पीपल विद पॉजिटिव वाइब्स, पीपल नॉट विद नेगेटिविटी. और इस दुनिया में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और कई बार कुछ लोग फंसे होते हैं अपने दलदल में, मैं ऐसा मानती हूँ. नॉट दैट दे आर इन लाइक एक्चुअली बैड पीपल और एनीथिंग, ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार लोग अपने दलदल में फंसे होते हैं, अपनी परेशानियों में, और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी या बिटरनेस और उससे जुड़ के और बहुत सारी चीजें, ईर्ष्या, जेलस एंड लॉट ऑफ नेगेटिविटी आ जाती है. क्या करें, जिंदगी है, ये सारी चीजें भी साथ में चिपक जाती हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई फील इज फॉर एवरी पर्सन इज टू सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी, विद पॉजिटिव पीपल, बिकॉज दैट विल इंश्योर कि आप जो हैं अंदर से खुश रहें, पॉजिटिव रहें और आपके आसपास बहुत अच्छी वाइब्स रहें. ऐसा मैं मानती हूं एंड आई ट्रूली ट्राई टू डू दैट एक्टिवली. पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, पहले मैं सोचती थी जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे जो अजीज हैं, कोई बात नहीं, बिटर हैं, ये हैं, वो हैं, कोई बात नहीं, आई विल स्टे विद देम, आई विल. बट ओवर द इयर्स आई स्टार्टेड रियलाइजिंग नो, वन शुड मेक एन अटेम्प्ट टू स्टे क्लोज टू पीपल हु आर पॉजिटिव. और कोशिश करिए अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव है उन्हें बदलने की, लेकिन अगर नहीं बदलते, थोड़ा सा अगर कर सकते हैं तो डिस्टेंस बना लीजिए. अपनी खुशी, अपनी सेल्फ बींग और हैप्पीनेस को सेफ गार्ड करना गलत बात नहीं है.

0: थोड़ा सा वक्त बचा है, वी आर हेडिंग इनटू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. बताना चाहती हूँ आपको, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ओमर ख्वाजा. इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट और इफ देयर इज अ स्लिप और फॉल इंसिडेंट, डोंट वरी, अटॉर्नी ओमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कंपनसेशन दैट यू डिजर्व. डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल, इज स्ट्रेसफुल, वेरी स्ट्रेसफुल. सो यू नीड एन अटॉर्नी दैट विल मेक श्योर दैट यू आर कंपनसेटेड एंड यू डोंट पे अंटिल यू विन. फ्री कंसल्टेशन के लिए आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, नंबर है 469-300-5046 और यू कैन विजिट attorneyomer.com. थोड़ी देर में फिर मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद एंड वी विल कंटिन्यू दिस शो अंटिल 9 PM.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास. ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन. ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर, द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर ख्वाजा.
2: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
4: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
5: कौन सा?
4: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
5: अरे सारे तो सेम है.
4: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
5: ओ हाँ, ये तो अलग है.
6: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, zyada paperwork. Option C, credit score ka concern. Ya option D, loan decline hone ka dar.
8: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
7: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए.
9: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
6: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338. The SBA Loan Experts. फैसला क्लैरिटी के साथ.
10: सब कुछ साफ रख सकते हो,
11: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती. कोई नहीं सोचता मेरे बारे में.
12: क्योंकि ये कौन बोला?
11: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं. और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे. हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है. मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या